आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जीवन में प्रेम, सुंदरता और मधुर भावनाओं का संदेश देता है फूल और पुष्प। फूल अपने रंगों और खुशबू से वातावरण को खूबसूरत और सुंदर बना देते हैं, वैसे ही प्रेम और अपनापन भी जीवन को खुशियों से भर देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में स्नेह, सरलता और सकारात्मकता बनाए रखने से हर दिन और हर मन सुंदर बन सकता है।

मेरा मन तेरा प्यासा, ये गीत हम आप सुनेंगे। ये गीत प्रेम और अपनत्व की गहरी भावना को व्यक्त करता है। ये गीत मन की उस चाहत को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपने प्रिय के स्नेह के साथ की कामना करता है। प्रेम जीवन को मधुर बनाता है, रिश्तों में विश्वास और अपनापन भरता है। ये प्रेम ही है जो हमें ये सिखाता है कि सच्चा स्नेह जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बना देता है, और यकीनन दुनिया प्रेम पर ही टिकी हुई है। तो चलिए सुनते हैं रफी साहब की आवाज में ये गीत।

जीवन और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में हमें आगे बढ़ने, सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जबकि प्रेम जीवन में मिठास, अपनापन और खुशी भरता है। प्रेम देखा जाए तो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि परिवार, मित्रों और समाज के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना भी व्यक्त करता है। प्रेम से जीवन में विश्वास, सहारा और सकारात्मकता आती है। जिस जीवन में प्रेम होता है वो अत्यधिक सुंदर, अर्थपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। इसी प्रेम और सद्भाव के साथ जीना ही जीवन की सच्ची सुंदरता है।

और हम आप भी तो प्रेम की इसी डोर से बंधे हुए हैं। तो इसी के साथ भोर सुहानी का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई 2026 सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब वक्त है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर इंग्लिश न्यूज, 6:10 पर कार्यक्रम अर्पण सुन पाएंगे। सात बजकर दस मिनट का समय होगा गोल्ड सुप्रभात का। आज सवेरे आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी। दस बजकर 30 मिनट पर दिल का मेल बॉक्स कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 11:10 का वक्त होगा तस्वीर का, और आज तस्वीर में आप सुनेंगे सापूतारा गुजरात के बारे में।

12:10 का वक्त होगा एक कदम बुजुर्गों की ओर कार्यक्रम का। एक 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। तीन 3:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मन भावन। चार 4:30 का वक्त होगा कार्यक्रम परिक्रमा का और 5:10 पर आप सुनेंगे पानी पर लिखी कहानी। गुमराह स्वर कुसुमलता, परिकल्पना निर्देशन प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे

सांझ ढले। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागीरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वेण्टम् कम्प्यूटिङ्ग् अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीयसङ्कटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आर्जी कर चिकित्सामहाविद्यालये बलात्कार हत्याप्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य SIT इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषणविभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्तनिदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य 25 दिनाङ्कात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। NEET परीक्षापत्रस्रावप्रकरणस्य प्रमुखविकासे लातूरनगरस्य बालरोगचिकित्सकः डाक्टर् मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषणविभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डाक्टर् शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै NEET परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषणसंस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य पुलवामा आतङ्कवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हम्जा बुरहान् नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। IPL क्रिकेट क्रीडाचक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् 91 धावनाङ्कैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 30+200 धावनाङ्कानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्यचतुर्दशकन्दुकक्षेपणचक्रेषु 40+100 धावनाङ्कान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं

0: के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जाँच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. Mr. Christodoulidis arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works Alexis Vafaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance, IBCA, summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit at several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been cleared that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओह,
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी पर रखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
5: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
6: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
5: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आ रहे माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
6: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
5: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
6: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
5: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
6: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
5: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
6: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
5: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
7: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2103.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.81 मीटर पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी सुन सकते हैं। सामीन, आज जुमैतुल मुबारक है और आज का जो हमारा थीम होता है, इस दिन का थीम होता है मॉरल वैल्यूज, इखलाकियात के बारे में हम बात करते हैं आज के दिन। मैं हूँ रिफत आरा और मेरे साथ है परवेज मीर।
8: बिल्कुल सही रिफत जी, मॉरल वैल्यूज مارلٹی کن گھان مارل چاہے ویلوزن ہن کت کرو یا مارل ایجوکیشن کت کرو
7: بالکل
8: اک ذمہ داری باسان
7: صحیح
8: اک ریسپانسبلٹی باسان یہ ریسپانسبلٹی والدین ہن یہ ریسپانسبلٹی استاد ہن یہ ریسپانسبلٹی ہولس من سوسائٹی ہن
7: بالکل
8: تاز یم سات مارل ویلوز ویلوز ہن کت کر سن نو پوئی اس امچ اہس گرو کر
7: بالکل
8: ساری فیسلٹی پریت کھانا چیز آیتن اسیت مگر تو تی باسان کتی تامت زن کمی ہش
7: بالکل یہ کمی چھ مے باسان ام موجبن تکیاز اس تھو بچن ہر کان فیسلٹی اویلیبل تمن پیو نت ساڑن کان چیز تمن باسو نو ویلیو چھ تم ساتن کن چیز باسان یم ساتن سو چیز نایاب چھ آسان پتہ چھ ونان وا یہ چیز گوس مے آز یم ساتن سوری فیسلٹی بچن روز تمن گئی مارل ویلیوز کم ونو تھی ذمہ داری ریسپانسبلٹی ہر کن والدین پنہ طرف وستاد پنہ طرف سکول کالجز یم تک بوڑ بار رول ات مز پلے کران یم زن بچن مزن اخلاقیات گن پید کران
8: بالکل صحیح کت یم سات امن ویلزن ہن کت کران ریسپانسبلٹی ہن کت کران رفت جی کہ ذاتی طور ذمہ دار بنن اس بچس پریت کان فیسلٹی دن تہ ضروری وقت اہمیت
7: بالکل

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 7:55 हुए हैं। अब के बाद नशर होने वाले प्रोग्रामों पर एक नजर डालते हैं।

सुबह 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से खुश उसी प्रोग्राम रिले होगा। छह करोड़ समाप्त करें दिन के 11:30 पर और दिन के 2:30 बजे फनकार हैं मोहम्मद अब्दुल्ला शाखसाज और साथी। इनसे आप बिलतरतीब कलाम निसार दिलदार और कलाम वली बाट सुनेंगे। 12:40 पर खवातीन की महफिल सजेगी भजमे नस्वा प्रोग्राम के साथ। एमसीईआरटी का सुपर सेट प्रोग्राम समाप्त करें दिन के 1:10 पर।

सपहर 3 बजे पूज्य वायु के लिए प्रोग्राम नशर होगा। पहाड़ी प्रोग्राम का वक्त रहेगा 4 बजे, 4:30 पर पंजाबी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा।

रात 8 बजे प्रोग्राम समाप्त करने वादी की आवाज सपोर्ट स्टार। ये प्रोग्राम नशर होगा रात 8:30 पर और जमीन रात 9 बजे। स्पॉन्सर प्रोग्राम समाप्त करें हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। मुकर्रर हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू। पेशकश सलीम एजाज कपड़ा।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार प्रभात सुनते हैं।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री

0: क्रिस्टोडुलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री

0: अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
1: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर।

0: हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है, हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: یہ آکاشونی سری نگر میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھ اخ میٹر تو ایف ایم اخت 3.5 میگا ہرٹز پہ سمین صبح 8 بجے تو 15 منٹ سپدے
3: ڈائریکٹریٹ آف آیوش جے اینڈ کے بواسطہ ضلع آفیسر آیوش پلوامہ تو شوپیان نیشنل آیوش مشن کس آئی ای سی کمپوننٹس تحت پروگرام پیش کران آیوش صحت زمین
4: سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیوش صحت زمین ہس بہ تہ میزبان رشید نظامی سان طرف کرتو مائع بروت لولو بروت السلام علیکم قبول آج سے سن سٹوڈیوز مز تشریف آور ڈاکٹر محمد فاروق نقش بندی صاحب یم زن ایم ڈی میڈیسن سی پی ایچ ڈی تن فرض انجام دان بحثیت ڈسٹرکٹ آیوش آفیسر پلوامہ اینڈ شوپیان ڈاکٹر صاحب خیر مقدم
5: شکریہ نظامی صاحب
4: ڈاکٹر صاحب آج اہس بڑے امپارٹنٹ موضوع زورمت امپارٹنٹ امہ لحاظ زز وچان پریت کان انسان وہ چھوٹا بچہ ہو یا ایک بزرگ سارے لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں اب سوشل میڈیا سے جڑنا تو ایک اچھی بات ہے لیکن اس کو عادت بنانا ایک لت پڑنا وہ بری بات ہے ونکس وچان نوجوان رات سن 3 بجن تان تم آسان موبائلن پہ سوشل میڈیا تو سون صحت آج زور اہس موضوع
5: بہترین موضوع آج اس اگر وچو کنٹمپرری حالات مز کی تھی وچو ونکس پریت کان ست انگیج گومت بیس بدقسمتی اس تیس نوان ات اتھینٹک اس سون عام نفر سہ اتھینٹک سورس آف انفارمیشن یہ فائدہ مند تہن کی میجارٹی چیز سوشل میڈیا پہ تم کن نت کن حالت مز اہس نقصان واتن تہد اس ٹاپک بہترین ٹاپک ات مز ون بی امپارٹنٹ کر سون بچہ نو دے ہیو فیل دا وکٹم تم بنے وکٹم ام سوشل میڈیا تھی وچو اگر تر گھر ودن موج تمس موبائل دوں ہسا وچ یہ بدقسمتی بہت

0: मुसल्लह अफराद की फायरिंग में हमजा बुरहान मारा गया है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले का एक सरगना था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा एहलकारों की मौत हो गई थी। हमजा बुरहान अलबद्र दहशतगर्द ग्रुप का एक कमांडर था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों में उसके मुलव्वस होने के बिना पर अप्रैल 2022 में भारत ने उसे दहशतगर्द करार दिया था। पुलवामा हमले के बाद से वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एक टीचर के भेस में रह रहा था। मकामी पुलिस के मुताबिक गोजरा मुजफ्फराबाद में एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल बुरहान को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कल सुबह अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले का रहने वाला था। बाद में वो पाकिस्तान चला गया और अलबद्र दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हो गया। पंजाब पुलिस ने पठानकोट के एक बाशिंदे को पठानकोट जम्मू कौमी शाहराह 44 पर इंटरनेट से मुंसलिक सीसीटीवी कैमरा नस्ब करके पाकिस्तान में मुकीम अपने आकाओं के लिए जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया है। पठानकोट के एसएसपी दिलजिंदर सिंह ढिल्लो ने आकाशवाणी न्यूज़ को बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम बलजीत सिंह ने मुबैना तौर पर फौज और नीम फौजी दस्तों की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए कौमी शाहराह 44 पर एक पुल के नज़दीक सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया था। इसकी लाइव फीड पाकिस्तान में मुकीम आईएसआई के कारिंदों से शेयर की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में नए तामीर किए गए वैष्णवी भवन को अकीदतमंदों को वक्फ किया। इसका मकसद पवित्र गुफा में वाक़ मंदिर में यात्रियों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाना और उनके क़याम की सहूलियात में इजाफा करना है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि नए भवन के तामीर होने से वहां हर साल आने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई तादाद के मद्देनज़र उन्हें जदीद तर्ज का आरामदेह बुनियादी ढांचा फराहम किया जा सकेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका भारत को जितनी वो चाहे तवानाई फरोख्त करने के लिए तैयार है। उन्होंने आबनाए हुरमुज के बंद होने के सबब भारत पर तवानाई की आला कीमतों के असर के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। स्वीडन और भारत के अपने दौरे पर रवाना होते हुए मियामी में नामानिगारों से बातचीत के दौरान वजीर मौसूफ ने यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने भारत को एक अजीम शराकत दार भी करार दिया और कहा कि उनका दौरा इसीलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस मौके पर उन्हें क्वाड ममालिक के वुजरा से मुलाकात का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में दर्जा हरारत तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरी रियासत शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। लगातार पांचवें दिन रियासत का बांदा जिला मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा। वहां दिन का दर्जा हरारत 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: रियासत में पारा हर गुजरने वाले दिन के साथ ही नई बुलंदी पर पहुंच रहा है। बुंदेलखंड खिता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां बेशतर मकामात पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। बांदा में ये 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो नॉर्मल से 4 डिग्री ज्यादा है और इससे शहर में रोजमर्रा की जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। प्रयागराज में भी टेम्परेचर 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जो मामूल 5 डिग्री ज्यादा है। लोगों को रात के वक्त भी गर्मी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रात में भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद से बहुत शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तेज गर्मी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी आज सख्त गर्मी का इम्कान है। इस दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज रात में भी मौसम गर्म रहेगा। IMD ने पंजाब और मगरबी राजस्थान में आज कहीं कहीं धूल भरी आंधी का भी इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में पानी की बचत को मुस्तहकम करने की खातिर एक अहम इकदाम का ऐलान किया है जिसके तहत मानसून के आगाज से पहले 75 सरकारी स्कूलों में बारिश के पानी को जखीरा करने के निजाम को बहाल किया जाएगा और उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इम्कान है कि इससे बारिश के पानी को जखीरा करने की सलाहियत तकरीबन 50 करोड़ लीटर हो जाएगी। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का जीत का बड़ा निशाना दिया था और चेन्नई की टीम महज 13 ओवर्स और 4 गेंदों में 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। गुजरात टाइटन्स के लिए मोहम्मद सिराज, राशिद खान और

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय सुबह के 9 बज चुके हैं।
1: आज की सुर्खियां सुर्खियां सुर्खियां
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आदाब। आज जुमतुल मुबारक है। जिलहजा 1447 हिजरी की 5 तारीख मुताबिक 22 मई 2026 ईस्वी। मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां लेकर मैं परवेज मीर और मेरे साथ रिफत आरा आपकी खिदमत में हाजिर।
3: जी हाँ परवेज, अखबार की पहली खबर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कटरा में अक्षय यात्रा के सेंट्रलाइज्ड मिड डे मील किचन का संग बुनियाद रखा। नौजवान नस्ल की गजाइत हमारे मुस्तकबिल की तश्कील करेगी। नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत और समाजी तंजीमों के दरमियान मजबूत तआवुन पर जोर दिया।
0: अखबारात लिखते हैं, मौरूसी बीमारियों में मुबतला अफराद को सुस्ती सस्ती तशखीस और स्क्रीनिंग की सहूलियतें फराहम करना नागुजीर। जीनियाती बीमारियों के इलाज में हिंदुस्तान एक नए दौर में दाखिल। जीन और जेनूम पर मबनी इलाज मुस्तकबिल की सेहत खिदमात की बुनियाद होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
3: एक और खबर में लिखा है, बुध को देर रात शुमाली और वस्ती कश्मीर में आंधी नुमा बर्क रफ्तार हवाएं चलने से खौफ का माहौल। बांदीपोरा और सोपोर में कई ढांचों को नुकसान, कई अफराद जख्मी। सड़कों को भी नुकसान, कुछ घरों में पानी और कचरा दाखिल। मुतासर इलाकों में खौफ और हिरास, जोजीला में ताजा बर्फबारी।
0: ईद उल अजहा से कबल महंगाई का दबाव बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा के करीब आते ही ईद सामान, कपड़ों और कुर्बानी के जानवरों और मटन की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बायस अवामी सतह पर शदीद बेचैनी और तश्वीश पाई जा रही है।
3: भारत ने हमेशा अमन, गैर जानबदारी और इंसानी खिदमत को तरजीह दी। हिंदुस्तानी फौजियों की खिदमत का एतराफ, बाहमी फहम अदराक के फरोग में अहम संग मील, वजीर दिफा।
0: मैट्रिक पास तलबा के लिए विद्यान स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन का आगाज। मैट्रिक में 75% नंबर हासिल करने वाले तलबा के लिए वजाइफ का ऐलान।
3: जम्मू व कश्मीर में अगले 48 घंटे मौसमी सूरत हाल खराब, तेज हवाओं के साथ जालाबारी भी मुतवक्का, मौसमियाती माहरीन।
0: वजीर आजम का कम वक्त में ज्यादा काम करने की अहमियत पर जोर। फाइलों की तेज नकलो हरकत को यकीनी बनाने और गैर जरूरी तरीके कार में ताखीर को खत्म करने की हिदायत।

0: जब भी कहीं पे हमें ये समझ आता है या हमें ये इन्फॉर्म किया जाता है आरबीआई या नाबार्ड के द्वारा कि यहाँ पे अनबैंक्ड एरिया है, जहाँ पे लोगों को 5 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है बैंकिंग के लिए, वहाँ हम डेफिनेटली एक ना एक बैंकिंग पॉइंट बनाते हैं, चाहे वो बीसी के माध्यम से हो या ब्रांच के माध्यम से हो।
1: जम्मू कश्मीर में जारी मनशियात के खिलाफ 100 रोजा अभियान के तहत अब तक हजारों जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए हैं, जिनमें लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी सरगर्म शिरकत दिखाकर मनशियात के खिलाफ अपनी पुख्ता इरादे का इजहार किया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर की सदारत में जिला सतह की नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग के दौरान जिले में मनशियात मुखालिफ इकदाम और इस लत में पड़े नौजवानों की बहाली के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया गया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत ही जिला बांडीपोरा के कई तालीमी इदारों में भी कुछ जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इस दौरान तालिब इल्मों और दीगर शुरका को मनशियात की बिदत के खिलाफ डट कर खड़ा रहने का अहद दिलाया गया। आखिर में दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा फिट
2: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
3: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
4: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
5: सब्र रूशित
4: सुनते रहिए हमारी नशरियात
2: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
6: सभी मॉर्निंग शो पे हम सुभच्युति भोजन आकाशवाणी श्रीनगरी पेठ सुबह 9 बजे तो 30 मिनट शब्दे बजाय 31 मिनट शब्दे तो आज से जुमा तरह मुबारक। آج چونکہ تہ خدمت مز ناتیہ کلام پیش کر مارننگ شوس مجھ آج تہ ست پرویز میر تو مے سفت آرا رفت جی کشیر یہ تہذیب تمدن موسیقی فن کلچر یہ سوری منفرد تت نعت لیکھن تیت اہس مان تو تھی ڈیکٹک نعت لیکھن دراصل اشوانی قلم چھلت جگری خون پن عقیدت اظہار تو یہ سہ روحانی وابستگی یت من شاعر پن دلچن دوبراین صرف مدینس کن مائل کران
7: چائنات مدایا محمد سٹھا تھز چینی ادایا محمد بلان نظر چانے بیمار کتیا بلان نظر چانے بیمار کتیا چھ دادن تے نش دوایا محمد

0: मिनिस्टर्स किसी को ने मतलब कि लिहाज या नहीं किया और जानदार से वो उनसे वसूल किया। उसके बाद मुझे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर बारामूला मुकर हुआ। हमारे कैंसल साहब थे वो बाहर गए थे, फिर मैं वहाँ उन्हीं दिन वहाँ पर जलजिला आया 2005 का जो जलजिला है अक्टूबर का 8 अक्टूबर को और 3 रमजान की 3 तारीख थी 2005 को। तो उस जलजिला आया उन दिनों में डिप्टी कमिश्नर था और एहसास कुरवानी हमारे वो SP थे वहाँ। तो वो ऊडी और ज़्यादा मुतासर हुआ था ऊडी और करना वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं उस वक्त डिप्टी कमिश्नर था। उसके बाद मुझे ये जो है आज़ाद साहब थे तो मुझे वहाँ पर स्पेशल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर लाया गया। फिर 2008 जब मेरे रिटायरमेंट होनी थी क्योंकि उन दिनों वो 85 हुआ करता था, तो फिर मुझे 1 साल के लिए मिलिट्री सर्विस की वजह से एक्सटेंशन दिया गया। और फिर रिटायरमेंट के बाद सरकार ने जो के सैनिक स्कूल जो यहाँ का वाहिद रेजिडेंशियल स्कूल है इसका प्रिंसिपल मुकर्रर किया। इस दौरान इस पूरे इसके दौरान मुझे सरकार ने 2004 में स्टेट अवार्ड फॉर मेरिटोरियस पब्लिक सर्विसेज दिया गया जिसमें कैश अवार्ड 51,000 का था, एक गोल्ड मेडल था मेरे साथ एक गोल्ड मेडल, और ये जो था ये जो साइटेशन एक जो थी साइटेशन का अगर आप भी मौका मिले तो आप देख लीजिए कि वहाँ पर सरकार ने बता दिया है कि मैंने क्या ये किया है। इसके बाद मैं मुख्तलिफ जो हैं रिटायरमेंट के दौरान और उससे पहले भी सर्विस के दौरान भी और रिटायरमेंट के दौरान भी मुख्तलिफ जो अदबी और समाजी और ये तंजीमें हैं उनके साथ मैं मुंसलिक रहा, पूरी उम्र रहा मुंकड़े। अदबी मरकज़ कमरा जो हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त कश्मीर जबान के लिए तंजीम है उसका मैं एडवाइज़र रहा। आजकल उर्दू काउंसिल के साथ वाबस्ता रहा, उसकी एडवाइजरी कमेटी का आजकल मैं चेयरमैन हूँ और प्रेसिडेंट हूँ उर्दू कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उर्दू के तहफ़ और उसके उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अदब शायरी समाजी सदमा से वाबस्ता रहा, इकबाल का आशिक हूँ।
1: अच्छा,
0: और मैंने एक सेमिनार में भी कहा था कि हम इकबाल के आशिक इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे साथ उनके जातीय खानदानी ताल्लुकात, इकबाल के आशिक इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे रसूल का आशिक।
1: क्या बात है, माशाल्लाह।
0: तो अरबी फारसी उर्दू कश्मीरी और अंग्रेजी जुबान में थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध है और दीनी समाज और अरबी हल्कों में जितने सारे रियासत में वो मुझे जानते हैं।
1: एजाज साहब, ये सुन के तो मैं बहुत मुतासर हुई क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कारकर्दगी रही। आपने हर फील्ड में काम किया, मैनेजमेंट संभाले, आपने मिनिस्टर्स के साथ काम किया, अदब से वाबस्तगी है, एक बहुत लंबा चौड़ा आपका जो है एक्सपीरियंस रहा है। और आज जो हमारा मौजू है, आज अखलाकी कदरों की अहमियत के बारे में हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपका लाइफ में, क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो है क्या इस दौर में अखलाकी कदरों की अहमियत कम हो गई है? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बताइए।
0: मैं एक बात आपसे कहूँगा, पहले हम ये बता दें कि अखलाकी हिस जो है,
1: जी जी,
0: अखलाकी कदर अखलाकी हिस जो है वो एक फितरी हिस है।
1: जी,
0: जो अल्लाह ने हमको बनाया है उसने हमने ये वदियत कर ली है अखलाकी फितरी है। तो ये जो है इसी अखलाकी हिस की वजह से हम कुछ सिफात को जो है वो पसंद करते हैं, कुछ सिफात को नापसंद करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बेशक मजमू इंसान का है। फर्ज कर लीजिए हमारी अखलाकियात में जो तहरीब जो है जो खूबी है, कुछ खूबियां हैं कुछ बुराइयां हैं। फर्ज कर लीजिए सच्चाई, इंसाफ, पास अहद और अमानत,
1: बिल्कुल
0: यह सारी खूबियां हैं और हर इंसान को बिला लिहाज उसमें कोई मजहब और उसकी कैद नहीं,
1: कैद नहीं है, सही बात।
0: इसके बरक्स जो है झूठ, जुल्म, बदअहदी और खयानत जो है,
1: जी जी,
0: इसको हर एक नापसंद करता है, ये एक बुराई है।
1: बिल्कुल,
0: हमदर्दी, रहम, फयाजी और फराग दिली, इसकी हमेशा कदर की गई है,
1: सही बात है।
0: और खुदगर्जी, संग दिली, बुखल और तंग नजरी, उसको कभी इज्जत का मुकाम नहीं मिला है। सब्र, तहमुल, इस्तकलाल, बुर्दबारी, उलुल अजमी, शिजात, ये हमेशा दाद के मुस्तहक रहे। और बेसब्री, छछोरापन, तुलुम मिजाजी, पस्त हौसले गई और बुजदली, ان کی کبھی کوئی قدر انسانی سماج میں نہیں رہی.
1: بالکل
0: اسی طرح ضبط نفس

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन पयान सुबह लाइव प्रोग्राम इस वक्त इंटरेक्टिव प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं और हमारे आज के मेहमान हैं एजाज अहमद कपूर साहब. इनके साथ हम इखलाकियात पर बात कर रहे हैं. एजाज साहब, हम तरक्की याफ्ता हो गए, टेक्नोलॉजी का दौर है और अच्छी बात है अगर हम तरक्की याफ्ता हो गए, लेकिन जो इस वक्त इखलाकी कदरें नायाब हैं बल्कि नायाब होती जा रही है, क्या इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं?
1: देखिए,

0: आप इंजीनियर एक बनाते हैं 18 साल में बनाते हैं, वो क्यों सीमेंट की जगह जो है रेत नहीं मिलाए? क्योंकि आपने उसको सिखाया नहीं,
1: सिखाया ही नहीं
0: कि आप जो है ये दयानतदारी जो है ये एक वर्चू है, और दयानतदारी और जो काम आप करते हैं ये काम करने के लिए, इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने और रोजा रखने से मुतल्लिक नहीं।
1: जी जी, ये बताइए क्या ये काम सिर्फ स्कूल कॉलेज और ये एकेडमिक्स का ही काम है? क्या वालिदैन का इसमें कोई फर्ज नहीं है? आप कहते हैं कि 18 साल तक वो पढ़ता है।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर गहरा बजने वाले हैं। समीन आज 23वें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के एजाजो तकरीब और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर 2026 की तकरीब मनाई जा रही है। इस तकरीब का रवा तबसरा आकाशवाणी दिल्ली की वसातत से अब से थोड़ी देर के बाद रिले होगा।

0: नमस्कार।
1: आप सभी से अनुरोध
0: सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएन ध्रुव के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
2: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम श्री जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

और फिलहाल आपको बता दें सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the dais addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है. महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है. अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. जय हिंद.
2: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का. और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री

0: पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
1: रक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्तचित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्तचित्र।
2: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
3: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
2: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
4: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
2: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों

0: समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
1: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
2: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
3: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
4: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह

को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्म पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाले इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौड़ उप कमांडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौड़ उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौड़ उप कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी मेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एंड नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द ईयर। ही वॉक्स टू द पोडियम।
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिर्देशक सीमा सुरक्षा बल, और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है, और भारत सरकार के सभी

उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है, इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में, स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण केएफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई, और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है, सैन्य सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय, पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा करकर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया, और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है, इसका बड़ा महत्व होता है। और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है, वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है, जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया, जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को

सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया, और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई, इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई, अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है, और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा। मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक, हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोक

करने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है। और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल आज 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एक बार एयर स्ट्राइक करकर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार करकर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। और मैं मानता हूं इसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए। ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
आने

वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस करकर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून थून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही,
सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिस सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या देखते देखते देखते

0: समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज वन, वाइब्रेंट विलेज टू आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा गिरिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले एक साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नार्कोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं

0: सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
1: जो महोदय के हृदय में
2: इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
0: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान।
3: और हेलो एवरीवन, टू मनीष अग्रवाल विशेष महानिदेशक बाय द डीजी ऑफ द Border Security Force, Shri Praveen Kumar.
0: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है, बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
3: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत।
5: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का, जिसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life. All the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam Ji Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया, बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप
3: जी समीन आप समाप्त कर रहे थे 23वें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की एजाजो तकरीब और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर 2026 की तकरीब। इस तकरीब का अलावा तबसरा आकाशवाणी दिल्ली की वसातत से आप समाप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:05 हुए हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी खबरों का

0: We enter this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक है, 12:10 और 15 सेकंड हुए हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। ये छा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 268.8 मीटर ते FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीना शुजु मतुल मुबारक पेश के कशिर नाथ शरीफ दस्तलो मोहम्मद अब्दुल्ला देव नदीम सोबनी कलाम से पेश करन का इसर निजामी।

0: तजुर्बे को मजीद बढ़ाएगी, क्योंकि ये श्रद्धालुओं के रश को देखते हुए एक आरामदायक बुनियादी ढांचे के साथ तामीर की गई है। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल कटरा में ही अक्षय पात्रा फाउंडेशन की मरकजी बावर्ची सहूलत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा,
1: किसी महान राष्ट्र की असली पहचान उन साधारण पलों में छिपी होती है जहाँ मानवता अपने सबसे सच्चे और सहज स्वरूप में दिखाई पड़ती है। उन पलों में सबसे महत्वपूर्ण पल वह है जब एक बच्चा स्कूल में न्यूट्रिशन से पूर्ण संतुलित भोजन प्राप्त करता है। देखा जाए तो हम सामान्य जीवन में अक्सर विरासत की बात करते हैं, उसमें तीन महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बचा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंप कर जा रहे हैं।
0: इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में देवी से मुतलिक एक जदीद तरीन बैनुल अक्वामी सतह का म्यूजियम कायम करने के उमूर का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुनक्कदा आला सतह की मीटिंग में बोर्ड के अरकान और दीगर मुतलिकीन ने आलमी सतह के रूहानी और सकाफती म्यूजियम के कयाम के बारे में अपनी बसीरत अफरोज तजावीज पेश की। वजीर अजम नरेंद्र मोदी इस माह की 31 तारीख को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूदात पर आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आकाशवाणी पर नशर होने वाले इस माहाना प्रोग्राम की ये 134वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम के लिए लोग अपनी आरा और तजावीज टोल फ्री नंबर 7800111800 पर भेज सकते हैं। तजावीज नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम पर भी 29 मई तक भेजी जा सकती है। आम लोग इस मकसद के लिए 1922 पर एक मिस कॉल भी दे सकते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में सेंसस 2027 के सिलसिले में मकानात का अज खुद शुमार करने का अमल जारी है। ये काम 17 मई से वेबसाइट www.se.census.gov.in पर बाजाबता शुरू हो गया है। मकानात के अज खुद इंदराज का अमल 30 मई तक जारी रहेगा, जिसके बाद यकुम जून से मुतलका अहलकार घर घर जाकर इन तफसीलात की तस्दीक करेंगे। पहले मरहले में घरों की गिनती मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले में आबादी का शुमार किया जाएगा। महकमे तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों या कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का इंतजामिया के पास अभी कोई मंसूबा नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने ताहम कहा कि वो इस बारे में किसी भी सरकारी हुक्मनामे पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। IIMC नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉ प्रज्ञा पलीवाल गौर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 निशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तिहान यकुम जून को लिया जाएगा।
2: IIMC की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिले इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना फॉर्म भर दें। मजीद मालूमात के लिए IIMC की वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर तलबा को कुछ मुश्किलात हों तो इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 9871056315।
0: जम्मू कश्मीर में जारी मनशियात के खिलाफ 100 रोजा अभियान के तहत अब तक हजारों जानकारी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए हैं, जिनमें लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी सरगर्म शिरकत दिखाकर मनशियात के खिलाफ अपनी पुख्ता इरादे का इजहार किया है। मुहिम के अब तक के दिनों में पुलिस की तरफ से की गई मुतअद्दिद कार्रवाइयों के दौरान सैकड़ों ड्रग्स स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया है। समाज के बुजुर्ग तबके को दीगर तिबी मसाइल के साथ साथ बाज़ौकात बेकाबू फिशारी खून का मसला भी दरपेश रहता है, जिसके लिए उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बात की मजीद वजाहत कर रहे हैं बुजुर्गों के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम।
3: रिसर्च कहता है कि हर 4 बुजुर्ग अफराद में सिर्फ एक का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। बुजुर्गों में हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये बगैर किसी वाज़े अलामत के दिमाग, दिल, गुर्दों और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है।
0: इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: मीटर एफएम 1.5 मेगा हर्सन पे 12 बजे 30 मिनट तो 30 सेकंड सपत माज बन बोजन पन मन पसंद प्रोग्राम बजमी निस्वा प्रोग्राम ब्रोन बोजो ये तजारती वक्फा
1: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुम्बाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
1: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
1: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?

0: सकती है।
1: जी बिमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
0: जी
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
0: जी
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरबन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
0: जी
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वारभाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
0: जी
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
1: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
0: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
1: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया

0: किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
1: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
2: सालू मर्दा तिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,

0: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
1: हाँ ये तो है।
0: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
1: सही कहा।
0: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
1: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
0: ठीक है,
1: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
0: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: पाजी सुनिए।
1: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
1: ये लो थे मक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ। मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे, इसको भी डालो।
1: हाँ हाँ,
4: ये देखो
1: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये, ये पौधा कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
1: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
1: हाँ।
4: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
1: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
7: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।

0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
1: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करने न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: वन है, तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें, जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग।
5: नगर आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर 1:40 हो रहे हैं। आए अब सुनते हैं नातिया कवाली, पेश कर रहे हैं हाजी मकबूल साबरी, हाजी फरीद।

जी सामीन, आप सुन रहे थे नातिया कवाली, पेश कर रहे थे हाजी मकबूल साबरी, हाजी फरीद और साथी। कलाम था HB मदानी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन आपसे थोड़ी देर के बाद रिले होगा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ दो तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को दोगुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नज़र कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। भारत और कुब्रुस ने आज

0: नई दिल्ली में मुख्तलिफ मैदानों में एक दूसरे के साथ बहुत से मुआहदे किए हैं, जिनमें दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप का क्याम, इख्तिरा और टेक्नोलॉजी, आला तालीम तहकीक और सकाफती तआवुन शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शोबों में दो तरफ़ा तआवुन को मुस्तहकम बनाने के बारे में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कसीर मुल्की फोरमों में तआवुन समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के मामलात पर तबादले ख्याल किया। अपने मुश्तरका बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान दोस्ती न सिर्फ मजबूत है बल्कि मुस्तकबिल में ताबनाक भी है। उन्होंने कहा कि पिछली दहाई में कुब्रुस से भारत में सरमायाकारी तकरीबन दो गुना हुई है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती माहदे के बाद बहुत से नए इम्कानात पैदा हुए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद में इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को एक बार फिर दो गुना करना है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी है। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: कुब्रुस के सदर जनाब निकोस ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन भारत ताल्लुकात में पिछले साल काफ़ी वसअत आई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल इन ताल्लुकात में वज़ीर आज़म मोदी के कुब्रुस के दौरे से शराकत दारी की रफ्तार में काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ है। कुब्रुस के सदर आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और कुब्रुस के दरमियान करीबी और देरीना शराकत दारी है। दोनों मुल्कों के दरमियान अगले साल फरवरी में सिफारती ताल्लुकात के 65 साल पूरे होंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत पूरी सरहद को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में ड्रोन, रडार, कैमरे और दीगर तकनीकी वसाइल शामिल किए जाएंगे। उन्होंने ये काम एक ऐसी सरहद के हिफाजती फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहा है जिसे पार करना मुमकिन न हो, जिसके लिए स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत आने वाले साल में सरहदी हिफाजती फोर्स के सलामती निज़ाम में हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।
2: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बैन अलाक़वामी सरहदों की सिक्योरिटी को चैलेंजों से निमटने के एक अलहदा काम के बजाय वसीतर इलाकाई जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। जनाब शाह ने कहा कि कई तरह के चैलेंजों और दुश्वार हालात के बावजूद बीएसएफ ने लगातार मुल्क का नाम रोशन किया है। जनाब अमित शाह ने दरअंदाजी, मनुष्यात की स्मगलिंग, जाली करेंसी के चलन और हथियारों और नशावर अद्वियात की स्मगलिंग समेत उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात को उजागर किया। वजीर दाखिला ने ज्यादा मरबूत और जामे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया और रियासती पुलिस, मरकजी मुसल्ला फोर्सेज, सुराग रसा एजेंसियों और मकामी इंतजामिया के माबेन और ज्यादा तालमेल की जरूरत भी उजागर की। इंतखाबी कमीशन ने आज 10 रियासतों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। साबिक वजीर आजम एचडी देवगौड़ा, मरकजी वजरा जॉर्ज क्यूरिन और रवनीत सिंह वो अरकान हैं जिनकी मुद्दत कार अगले महीने खत्म हो रही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें, झारखंड की 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट खाली हो जाएगी। कमीशन के मुताबिक इस सिलसिले में 1 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 18 जून को पोलिंग होगी। उसी दिन वोटों की गिनती की जाएगी। कमीशन ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान किया है। ये सीटें महाराष्ट्र की नायब वज़ीर आला सुनेत्रा अजीत पवार और AIA

0: डीएमके के रुकने पार्लियामेंट सीवी शनमुगम के हालिया रियासती असेंबली इंतखाबात में मुंतखब होने के बाद खाली हो गई हैं। इन सीटों के लिए भी 18 जून को ही इंतखाबात कराए जाएंगे। केरलम में 7 मरतबा के कांग्रेस एमएलए तिरुवंचूर राधा कृष्णन को एक तारीखी सहरुखी मुकाबले में 16वीं केरलम कानून साज असेंबली का स्पीकर चुन लिया गया है। पहली बार ऐसा है कि इस चुनाव में बरसर इकतदार यूडीएफ बाएं बाजू और बीजेपी की क्यादत वाले एनडीए के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बरसर इकतदार यूडीएफ उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 140 रुकनी असेंबली में 101 वोटों से स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। अपोजिशन एलडीएफ उम्मीदवार एसी महीउद्दीन ने 65 वोट, जबकि बीजेपी उम्मीदवार बीबी गोपागोपाल ने 3 वोट हासिल किए। ऐसा पहली बार है कि बीजेपी ने केरलम में स्पीकर का चुनाव लड़ा हो। नायब स्पीकर के लिए इंतखाब 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लूर्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यूएपीए केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। इस केस का ताल्लुक 2020 के शिमाल मशरकी दिल्ली के फसादात के पीछे मुबैना एक बड़ी साजिश से है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की एक डिवीजन बेंच ने उमर खालिद की रिहाई के लिए सख्त शराइत के साथ 1 से 3 जून तक की इजाजत दी है। उमर खालिद ने 15 दिन की उबूरी जमानत चाही थी ताकि वो अपने मरहूम चचा के चहलुम की रसूम में शिरकत कर सके और अपनी वालिदा के ऑपरेशन से पहले और बाद में उनकी निगहदाश्त कर सके। अदालत ने हिदायत दी कि खालिद को सिर्फ एक मोबाइल फोन इस्तेमाल करना होगा और तफ्तीशी अफसर के साथ लगातार रابطे में रहना होगा। दिल्ली की एक अदालत ने आज राष्ट्रीय जनता दल के सरबरा लालू प्रसाद यादव, उनके कुनबे के अफराद और दीगर के खिलाफ इल्जामात तय करने के बारे में अपना फैसला 9 जून तक मुलतवी कर दिया है। इस केस का ताल्लुक आईआरसीटीसी होटल घोटाले में मुबैना तौर पर काले धन को जायज बनाने से है। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए शदीद गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइंदा 2 दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्म लहर चलने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ 2 तरफा बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत और कुब्रुस का मकसद अगले 5 साल में सरमायाकारी को 2 गुना करना है। इंतखाबी कमीशन ने अगले माह की 18 तारीख को 10 रियासतों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए केस में उमर खालिद को 3 दिन की उबूरी जमानत दे दी है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी के पेश नज़र कल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

जी दोस्तों, अगला नगमा हमने चुना है फिल्म अनजाना अनजानी से राहत फतेह अली खान साहब और साथियों की आवाजें, मुझकी तरतीब दी है विशाल शेखर ने।

जी दोस्तों, आए अब आखिर में सुनते हैं फिल्म माय नेम इज खान से ये खूबसूरत नगमा शंकर महादेवन और श्रेया घोषल की आवाज़ें मोस की तरतीब दी है शंकर एहसान लॉय ने।

जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे चंद फिल्मी नगमे। दिन के अढ़ाई बज चुके हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। इच्छा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर तो FM 103.5 MHz पेट समीन वन पे छकर तो रो फनकार मोहम्मद अब्दुल्ला शाख साज तो हमनवा यम नश बूज तु कल में वली भट्ट।

जय हिंद। फुजबे फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूं आपके रेडियो सखी सूफी फातिमा आपके खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपके नजर फिल्म लोहू के दो रंग से खूबसूरत गीत किशोरदा की आवाज, फरुख कैसर के बोल, बप्पी लहरी का संगीत।

जी दोस्तों, आप समाप्त कर रहे हैं फौजी भाई उनके लिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम। आपको याद दिला दे, आज रात 9 बजे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समाप्त करिए हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। मुकर्रर हैं मौलाना फयाज अहमद जोरू साहब। पेशकश सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलिएगा आज रात 9 बजे। समाप्त कीजिए फिल्म समाधि से गीत अशताई की आवाज में, मुजरू सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

जी दोस्तों, दो शिकारी से अगला नगमा सुनते हैं। जान निसार अख्तर के बोल चित्र गुफ्त के संगीत में आशाताई की आवाज़।

जी दोस्तों, समाप्त कीजिए फिल्म बाबू से ये प्यारा सा गीत, मुजरू के बोल राधेश रेशम का संगीत, सुन की देवी लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपकी नजर।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
2: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
2: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
2: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
2: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
2: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
4: जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में। घर घर की आवाज, ऑल इंडिया रेडियो की आवाज, मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप डीटीएस सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों आपको याद दिला दे, आज रात 9 बजे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समाप्त कीजिएगा हम सफर। मौजूद है कुर्बानी के आदाब व अहकाम, मुकर्रर है मौलाना फयाज अहमद जोरू साहब, पेशकश सलीम एजाज कपड़ा।

जी दोस्तों, आपने सही पहचाना, आप समझ कर रहे हैं फिल्म झुक गया आसमान से। गीत मोहम्मद रफी की सदाबहार आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जय किशन का संगीत।

सत्यम शिवम सुंदरम। अब पेश है इस फिल्म से ये गीत मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपकी नजर फिल्म चलते चलते से प्यारा सा गीत सुलक्षणा पंडित और बप्पी लहरी की आवाजों में, अमित खन्ना के बोल, बप्पी लहरी का संगीत।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.81 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सफर के 4 बज चुके हैं। अब दर्श होता है आज का पहाड़ी प्रोग्राम। प्रोग्राम से पहले ये तिजारती वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तू अज दा पहाड़ी प्रोग्राम किनका में हां तुस्ती मेजबान गजाला मुमताज सामीन तुसा सारयां को प्रोग्राम भी जी आयां को आखतियां हर कदया उते प्रोग्राम दी शान बदाओ सामीन अज जुमा मुबारक ते आओ प्रोग्राम दी शुरुआत करदियां इस नात शरीफ नाल आवाज असगर अली कुरैशी उरां दी
1: मोहम्मद दी जलवा नुमाई ना होंदी

0: समीन, आप पंजाबी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं समीना शाह। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा आप हमें DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय शाम के 5 बज रहे हैं। समाप्त करें आज का गोजरी प्रोग्राम इस वक्त के बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: सामिन मारे को आगे एक गलबात है।
1: मेरा रूबरू तशरीफ फरमा है मुफ्ती मंजूर अहमद कासमी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: थारा बहुत बहुत शुक्रिया तो हमने आकाशवाणी श्रीनगर ने टाइम दिया। मुफ्ती साहब हज का याम है वो जड़ी बड़ी ईद है जित इसकी अफादियत ईद के नाल है हज के नाल है लेकिन उत कुर्बानी भी एक अहम जुज़ है। कुर्बानी का के मसला है के मसाइल हैं किस किस्म का जानवर होना चाहिए के उम्र होनी चाहिए के उनमें अवसाफ होना चाहिए इस हवाले नाल तां मौजू पर रोशनी करो।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लन यनालल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़्वा मिनकुम। सदक़ अल्लाह मौलाना अज़ीम। क़ुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला फरमावे
1: जी
2: कि अल्लाह ताला ना थारा न यो गोश्त पहुँचे मांस की ज़रूरत है न खून की ज़रूरत है। अल्लाह ताला थारा दिलां को तकवा देखना चाहे
1: जी
2: कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मेहरबानी की इस उम्मत के ऊपर। वरना सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना लख्त जिगर अल्लाह की राह के बीच कुर्बान करना था। इस माँ पूरा उतर पाता या ना उतर पाता
1: जी
2: लेकिन अल्लाह ताला ने उसका बदला में एक जानवर को की कुर्बानी को हुक्म देता और 10 तारीख से ले गए 12 तारीख यानी ये 3 दिन जड़ा है ये कुर्बानी का देने जिलेजा का 10 तारीख ते इसकी शुरुआत हुआ
1: ठीक
2: और 12 तारीख की गरूब आफ्ताब ते पहलम पहलम तक जिसने जानवर जबा कर छोड़े कुर्बानी की नीयत के नाल उसकी कुर्बानी अदा होगी और 12 गरूब आफ्ताब ते पहलम पहलम अगर जबा नहीं कर सके
1: ठीक
2: फिर उसके बाद कुर्बानी उसना माफ़ नहीं हो सके। अलबत्त कोई नहीं कर सके उसना एक जानवर की कुर्बानी
1: जी
2: अल्लाह के राह के बीच उसको सदको करना है उतनी रकम यानी वो एक ऐसा की रकम उसना अल्लाह के राह के बीच सदको करना है ता वो अल्लाह ताला के आगे उस वबाल से निकल सकेगा
1: ठीक।
2: लेकिन इस तरह कोई कहे हूँ कुर्बानी नहीं करता सदको कर छोड़ूँ 10,000 को कोई जानवर आवे को बेहतर हूँ 10,000 किसी गरीब की खिदमत कर छोड़ूँ यो हुक्म नहीं है।
1: ठीक
2: असल हुक्म है जानवर खरीदो और जानवर को खून बानो यानी ज़बह करना यो जुड़ा है असल अल्लाह को हुक्म यो ही है।
1: ठीक
2: तुम देखें कि पूरा आलम इस्लाम के बीच कितना जानवर लखा करोड़ा जानवर अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी ये दोनों के ऊपर है जिड़ा भी हैसियत हैं चाहे वे मर्द हैं चाहे ख्वातीन हैं
1: जी
2: उन ना कुर्बानी कर उनको हुक्म है। कुर्बानी का जानवर जड़ा है ये कड़ा जानवर हैं उनकी तफसील भी हदीस पाक में मुतय्यन कर छुड़ी है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी जानवर मुतय्यन किया और उनकी उम्र मुतय्यन की ये किसा जानवर होना चाहिए। इस माँ मारे इस खिता में क्योंकि ऊँट नहीं होता बिलफर्ज अगर कोई शख्स शौक रखे कि ऊँट आनूँ ऊँट की कुर्बानी करूँ तो उसने इस चीज़ को ख्याल रखना कि ऊँट की उम्र कम अज़ कम 5 साल तक काटनी होना चाहिए।
1: ठीक
2: ये ज़्यादातर जानवर जड़ा हैं मैस हैं डंगर हैं गां बकरी भेड़
1: ठीक
2: ये वे जानवर हैं। इन बीचों कोई जानवर बड़ा है जिस तरह गाँ है मैस है छोटा है दांद है यानी इनमें 7 आदमी शरीक हो सके 7 कुर्बानी हो सके
1: जी
2: उनमें शरीक होकर भी कर सकें।
1: ठीक
2: कोई एक शख्स ही पूरा जानवर करना चाहे उसना उसकी भी गुंजाइश है।
1: ठीक
2: जरा दूजा जानवर है जिसमें बकरी है पेड़ है बकरी की उम्र एक साल होनी चाहिए पेड़ भी 1 साल होनी चाहिए। अलबत्ता पेड़ दुम्बो एक किस्म है वो भी पेड़ ही की एक किस्म है उसमें अगर 6 महीना को

0: इतना मोटा ताज़ा है कि वो अगर साल का ललूटा मौसम छोड़े तो ये सियाण ना होवे, साल का कीड़ा है 6 महीने का कीड़ा,
1: जी
0: यानी इतना अगर फरबा होवे, मोटा ताज़ा होवे, तो वो 6 महीने को भी लेकर यो सिर्फ भेड़ ते दुम्बा को हुक्म है,
1: ठीक
0: बकरी को हुक्म यो नहीं है।
1: जी
0: बकरी 1 साल तक काटनी होनी चाहिए, ये इनकी उम्र मुतय्यन।
1: जी
0: और इन्हीं जानवरों की कुर्बानी, यानी कुर्बानी के वास्ते पालतू जानवर, जंगली जानवर जिस तरह जंगली गाय, जंगली बकरी है, वो किसी ने शिकार कर ली तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकता। ज़बह
1: जी
0: करके खाणो, लाल करके खाणो जायज़ है,
1: जी
0: लेकिन कुर्बानी अदा नहीं हो सकता। इसी तरह पालतू जानवर में कुकड़ भी आवे,
1: जी
0: इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है।
1: ठीक
0: जानवर कुर्बानी के वास्ते गां, मैंस, कई लोग ऐसा भी हैं वे मैंस की कुर्बानी नहीं, चोटा की कुर्बानी जायज़ नहीं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमावे, मैंस है चोटो है यो गाय की एक किस्म है,
1: ठीक
0: यानी इसको वही हुक्म है जो गां का हुक्म है।
1: ठीक
0: तो इस वास्ते इसमें किसी ने यो इश्काल नहीं होना चाहिए कि मैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं या चोटा की कुर्बानी जायज़ नहीं।
1: जी
0: जायज़ है ये जड़ा जानवर, हमने तारे सामने इनकी तफसील अर्ज़ की,
1: जी
0: इन में नर मादा सारे जड़ा हैं, उम्र बराबर हुआ तो नर मादा की कोई नहीं है, चाहे नर हो चाहे मादा हो
1: जी
0: उसकी कुर्बानी जायज़ है।
1: मुफ्ती साहब, जिस वक्त एक इंसान कुर्बानी करेगा उसके बाद एक जानवर का ये कितना हिस्सा करना चाहिए आमतौर के इनकी मतलब त्रै हिस्सा है तो इसकी क्या तफसील है?
0: असल में गोश्त जोड़ा तकसीम करना है,
1: ठीक
0: उसकी तफसील तम पूछें, इसको मुस्तहब तरीका जोड़ा त्रै हिस्सा कर छोड़ें।
1: ठीक
0: एक हो गया अपना घर वास्ते, एक
1: जी
0: हो गया करीबी रिश्तेदारों वास्ते,
1: जी
0: एक हो गया आम मुसलमान,
1: ठीक
0: उसमें फ़करा मसाकीन भी आमें,
1: जी
0: हमसाया भी आमें, हर मुसलमान उसमें आ जाए। तो ये त्रै हिस्सा करना जोड़ा है मुस्तहब है,
1: जी
0: और ये ज़रूरी नहीं है। शरीयत के अंदर बड़ी वसअत है, अगर तम ना ज़रूरत है, ये सारो जानवर थारो ख़ानदान इतना बड़ा है कि तुम सारा उसी में तकसीम कर छोड़ें,
1: जी
0: ता भी जायज़ है।
1: ठीक
0: सारो घर के भी जरूरत है, घर में भी रख सकें,
1: जी
0: सारो तकसीम कर छोड़ें, इसमें भी कोई
1: पाबंदी का ही नहीं
0: पाबंदी का ही नहीं।
1: जी
0: मुस्तहब यो है कि इसमें एक हिस्सा अपने वास्ते, एक ख़ास रिश्तेदारों वास्ते,
1: ठीक
0: और तीजो हिस्सा जुड़ा है वो आम मुसलमानों के वास्ते,
1: जी
0: ताकि एक तबरूक है ये सारा ना पहुँचे।
1: ठीक
0: यो मुस्तहब तरीक़ा लाजिम नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि शुरू इस्लाम के बीच जो हुक्म था कि तुम 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी को मांस डेरे नहीं रख सकता,
1: ठीक
0: क्योंकि उस वक्त हालात ऐसा था।
1: जी
0: बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि
1: सल्लल्लाहु
0: वसल्लम
1: अलैहि
0: ओण
1: वसल्लम
0: उतम ना उसको पाबंद नहीं करता कि तुम 3 दिन से ज़्यादा मांस डेरे नहीं रख सकता,
1: जी
0: बल्कि ओण इस्लाम ना बड़ी वसअत हो गई है, फतवात हासिल हुई है, ओण
1: ठीक
0: वे हालात मुसलमान का नहीं रहा,
1: जी
0: लिहाजा तम ओण मांस ना, अगर कई लोग जड़ा हैं वे संभाल कर रखें
1: जी
0: और कई कई महीने तक उसका इस्तेमाल भी करें,
1: ठीक
0: तो वो भी जायज़ है, उसमें भी कोई ममानियत नहीं है।
1: जी मुफ्ती साहब, जिस तरह ज़कात वास्ते साहिब निसाब होना लाजमी है, कुर्बानी वास्ते क्यों होना चाहिए?
0: कुर्बानी के वास्ते भी साहिब निसाब ही होना ज़रूरी है,
1: ठीक
0: जिस तरह इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है,
1: जी
0: ये सदका फितर है, इसी तरह कुर्बानी को भी हुक्म है। कुर्बानी जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
1: सल्लल्लाहु अलैहि
0: ने
1: वसल्लम
0: 10 साल मदीना में रहा,
1: ठीक
0: 10 साल कुर्बानी की, बल्कि हजरत अलवदा का मौका पर थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि
1: सल्लल्लाहु
0: वसल्लम
1: अलैहि
0: ने
1: वसल्लम
0: 100 ऊँट ज़बह किया है,
1: जी
0: उनके बीचों 63 ऊँट जड़ा था वह अपना दस्ते मुबारक ने ज़बह किया,
1: ठीक
0: और 37 ऊँट जड़ा था वे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला के हवाले किया, वे उनने ज़बह किया। वे 63 ऊँट जड़ा ज़बह किया है, उसके मुतलिक तफसील यह आवे कि नबी पाक सल्लल्लाहु
1: सल्लल्लाहु
0: अलैहि
1: अलैहि
0: वसल्लम की उम्र
1: वसल्लम
0: मुबारक
1: ठीक
0: 63 साल थी, तो हर साल का बदला में एक जानवर कुर्बान किया है।
1: जी
0: हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला, ये नबी पाक सल्लम का
1: सल्लल्लाहु
0: ख़ास खादिम रहा है,
1: ठीक
0: 10 साल खिदमत की है, कोई यो मामूली गाल नहीं है,
1: जी
0: मामूली सआदत नहीं है, यानी 1 घंटा वास्ते किसी ना खिदमत को मौक़ा मिल जाए, 2 दिन के वास्ते खिदमत को मौक़ा मिल जाए, तो वो इंसान कितना फ़ख्र करे,
1: जी
0: फलान बुजुर्ग के नाल, फलान के नाल मिना, इतने इतना जो वक्त थोड़ा खिदमत को मौक़ा मिले। ये वही अनस बिन मालिक रजी अल्लाह वही शख्सियत है जिनने 10 साल अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है।
1: जी
0: ये फरमावे कि हर साल कुर्बानी जिस वक्त आवे थी, कुर्बानी का दिन, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो
1: सल्लल्लाहु
0: लेला
1: अलैहि
0: आने था,
1: वसल्लम
0: बड़ा यानी बहुत वे खूबसूरत भी हमें था, मोटा ताज़ा भी हमें था,
1: जी
0: जिन्हें पाल गया ठीक ठाक, यानी वो जानवर जिस पर थारा दिल खुश हो जाए,
1: जी
0: वो जानवर अल्लाह की राह बेच कुर्बान करना चाहिए। इतना लिस्सो भी नहीं होना चाहिए कि वो
1: ठीक
0: टोर भी ना सके, उसकी हड्डियाँ के बीच भी कोई गोदा ना रे होवे,
1: जी
0: ऐसा लाकर जानवर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके नाल मोहब्बत होनी चाहिए, वो पाल पोस के ठीक ठाक। तो हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला फरमावे, नबी अलैहिस्सलाम दो जानवर करें था तो हूँ भी सारी ज़िंदगी दो जानवर करता रहे,
1: ठीक
0: क्योंकि यह इत्तबा थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि
1: सल्लल्लाहु
0: वसल्लम
1: अलैहि
0: की। और नबी अलैहिस्सलाम ने एक जानवर ते ज़बह किया,
1: जी
0: और उसके बाद वो ज़बह करने के बाद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाद अन्नी व अम्मा।

0: उसके ऊपर उसके ज़िम्मा लाजिम ही नहीं था,
1: जी
0: यानी शरण वो साहिब निसाब ही नहीं था,
1: ठीक
0: उसके ज़िम्मा लाजिम ही नहीं था।
1: जी
0: लेकिन उसे शौक ना लाने हो,
1: हाँ
0: या वो मर गया या फिर वो गुम गया,
1: ठीक
0: उस सूरत में क्योंकि इसने जोर ना अपने ऊपर लाजिम की है तो इसने दूसरे जानवर खरीदना चाहिए और
1: जी
0: कुर्बानी करनी चाहिए, या किसी दूजा के नाल शरीक हो गए,
1: जी
0: बड़ा जानवर को एक हिस्सा खरीद लेना चाहिए,
1: ठीक
0: उसमें माली बोझ भी उतना नहीं पैता और जो एक फरीजो एक वाजिब जिम्मा में होवे वो
1: जी
0: भी आसानी के नाल बसहूलत जिम्मत साकत भी हो जाए।
1: जी मुफ्ती साहब, तुमने फरमाया कि कुर्बानी का 3 दिन है, 10, 11 और 12। 10 तारीख ना सवेरे नमाज ते पहले भी कर सकते हैं या ना ईद
0: बिल
1: की नमाज के बाद।
0: इसमें इसमें दो सूरतें,
1: जी
0: एक हुक्म है उन आबादियों को
1: ठीक
0: जित जुम्मा की नमाज होवे ईद की नमाज होवे,
1: ठीक
0: एक तो यह जगह होगी, दूजी जगह वे जिड़े देहात हैं और बिलखसूस मारा ख़ास तौर पर गुजर बकरवाल तबका का लोग जड़ा हैं वे माल मवेशी ले गए
1: बैकग्राउंड
0: बैका
1: जी
0: में चले,
1: जी
0: एक उनका वास्ते हुक्म है।
1: ठीक
0: उनका वास्ते हुक्म यो है कि

0: वे ईद की नमाज होवे।
1: ठीक
0: एक तो यह जगह होगी, दूजी जगह वे हैं जिड़े देहात हैं, और बिलखसूस मारा खास तौर पर गुजर बकरवाल तबका का लोग जड़ा है वे माल मवेशी ले गए दहका में
1: जी
0: चले। एक उनका वास्ते हुक्म है,
1: ठीक
0: उनके वास्ते हुक्म यो है कि सुबह सादिक यानी फजर की आजान ते बाद वे जिस वक्त चाहे जिड़ी माली का ऊपर है
1: जी
0: वे अपनी कुर्बानी कर सकें।
1: ठीक
0: उनके वास्ते फजर तुलू होने ते बाद उनके वास्ते कुर्बानी को जानवर जबा करने को वक्त शुरू हो गया,
1: ठीक सुबह की नमाज के बाद
0: सुबह की नमाज के बाद
1: जी
0: जिस वक्त चाहे वे कर सकें।
1: ठीक
0: अलबत्ता जिड़ा वे उन कस्बा के बेचें बड़ा कस्बात हैं
1: जी
0: जिसमें ईद की नमाज अदा
1: जी
0: हुए जुमा की नमाज अदा हुए,
1: जी
0: उन लोगों के वास्ते है कि जब तक ईद नमाज नहीं पढ़ते
1: ठीक
0: तां तक उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं,
1: जी
0: वे कर नहीं सकता। अलबत्ता कुर्बानी ईद नमाज को यू मसला समझना है, बेलफर्ज थारा इलाका में
1: ठीक
0: जिस इलाका में तम रहे उस इलाका में अगर एक जगह भी ईद की नमाज के अदा कर ली,
1: जी
0: अगर चे अजा तमने कुर्बानी करनी है तमने ईद नमाज नहीं पढ़ी,
1: ठीक
0: लेकिन थारा ही उसी इलाका में पास पड़ोस के बीच दूजी जगह के बीच ईद की नमाज अदा हो गई है,
1: जी
0: तमने रखी हुई है ईद नमाज 8:30 ना,
1: ठीक
0: और थारा दूजा उसी इलाका में किसी मस्जिद में सुबह 7 बजे नमाज थी
1: जी
0: वो अदा होगी, उसके बाद सारंग की कुर्बानी जायज़ है।
1: ठीक
0: यानी एक जगह अगर नमाज ईद अदा हो गई है
1: जी
0: उस इलाका में बाकियों के वास्ते अगर चे उनने अजा अपनी ईद की नमाज नहीं पढ़ी
1: जी
0: अदा नहीं की उससे पहले भी अगर वो जानवर ज़बह करेगा तब वो उनकी कुर्बानी अदा हो जाएगी।
1: ठीक
0: हाँ इलाका में भी किसी जगह कुर्बानी की ईद की नमाज अदा नहीं हुई
1: अच्छा
0: उससे पहले अगर कोई जानवर ज़बह करेगा
1: जी
0: तो वो कुर्बानी उसका जिम्मा ते साकत नहीं, उसे
1: ठीक
0: उसका मुतालिक हदीस पाक में कि एक सहाबी रजी अल्लाह तआला नो उनने अपनी कुर्बानी को जानवर ज़बह करके उसके बाद आया हजूर के पास उनको ईद नमाज पढ़ा
1: ठीक
0: और आगे अर्ज़ के या रसूलल्लाह मैं आपकी
1: सही
0: कुर्बानी कर छोड़ी,
1: जी
0: तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो खाली एक मांस है जिड़ा तमने अपना घर आलम वास्ते मुहैया कर छोड़ियो,
1: ठीक
0: वरना कुर्बानी थारा जिम्मा ते साकत नहीं हुई,
1: जी
0: क्योंकि उस वक्त हुक्म यह था कि इमाम अलम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ फरमा था,
1: जी
0: जब तक अल्लाह का नबी कुर्बानी नहीं करें था
1: जी
0: दूजा किसी के वास्ते जायज़ नहीं थी, तो उस वास्ते उसने हुक्म देता कि थारी कुर्बानी अदा नहीं हुई तमने दूजो जानवर कुर्बान करना चाहिए।
1: जी
0: तो देहातों के बीच यानी मालिया के ऊपर या उन जगह में जित जुमा अदा नहीं होता
1: जी
0: उन लोगों ना फजर सुबह सादिक के बाद ही अपनी कुर्बानी को जानवर ज़बह कर सकें,
1: जी
0: और जिस जगह में जुम्मा ईद की नमाज अदा हुए और चाहिए बेहतर अफजल है कि ईद नमाज पढ़ने के बाद अपने जानवर कुर्बान करना चाहिए।
1: जी
0: अगर उस इलाके में एक जगह भी ईद की नमाज होगी
1: जी
0: तो सारंग वास्ते कुर्बानी करनी चाहिए।
1: जी मुफ्ती साहब, क्या यो जानवर जो कुर्बान कराए यो उस वक्त मौजूद होना चाहिए कहीं लोग है कि नहीं इस जानवर पर हाथ रखना बेहतर है? कोई ऐसा इंसान भी हुआ कि जो इस इलाका में मौजूद नहीं हो तो वो बैरून रियासत हुआ, बैरून मुल्क हुआ, तो उसका घर वाला कुर्बानी कर सके?
0: बिल्कुल इसके वास्ते इतनी चीज़ ज़रूरी है
1: जी
0: कि जिसकी कुर्बानी करें लगावा
1: ठीक
0: उसना कहना चाहिए
1: जी
0: कि हम थारी कुर्बानी करा, ताकि उसकी इजाज़त मिल जानी चाहिए
1: जी
0: उसको, वो तो होना ज़रूरी नहीं है।
1: ठीक
0: ठीक है अगर ऐसा मौका है कि जानवर के कोल हाजिर हो सके अफजल
1: जी
0: है बेहतर है,
1: ठीक
0: लेकिन इसको मतलब यो नहीं कि एक आदमी बैरून रियासत है
1: ठीक
0: या सफ़र में है
1: जी
0: तो उस सूरत में कारगा कुर्बानी करना चाहें
1: जी
0: और भी ये कहेंगे उसकी कुर्बानी तहाँ तक नहीं हो सके जब तक वो
1: जी
0: मौजूद नहीं हो सके, ऐसा
1: जी
0: नहीं है। उसना खाली उसके ना रबतों करके उसना कह छोड़ना चाहिए कि हमने
1: जी
0: ये जानवर आने हुआ हम थाली कुर्बानी करा,
1: जी
0: इतना उसना इतला ताकि उसना भी अपनी जगह ये हो जाए कि
1: जी
0: मेरी कुर्बानी अदा हो जाएगी। तो
1: ठीक
0: उस वक्त ज़रूरी नहीं है क्योंकि माली इबादत जड़ी है इसमें नियाबत भी जायज़ है
1: जी
0: और बदनी इबादत के बीच नियाबत जायज़ नहीं।
1: ठीक
0: थारा बदला कोई दूजा नमाज पढ़ लिया यूँ नहीं हो
1: जी
0: सकता, अलबत्त थारा थारे ऊपर ज़कात फ़र्ज है
1: जी
0: या सदका फितर तमना देना है,
1: ठीक
0: थारा चिंता में कुछ भी नहीं,
1: जी
0: तम दूजा दोस्त ना कहें कि तम मेरी तरफ सदका फितर अदा कर छोड़ो,
1: जी
0: यो थारो कर्जो मेरा जिम्मा रहेगा
1: जी
0: जिस पर मेरे को पैसा मांगो थारो कर्जो ला छोड़ूंगा।
1: जी
0: इस तरह माली इबादत के बीच नियाबत जायज़ है
1: जी
0: तो माली
1: बंदा
0: इबादत के बीच कुर्बानी भी आवे, तो
1: ठीक
0: इस वास्ते बेहतर अफजल है कि आप हाथ ना करो,
1: जी
0: लेकिन ऐसा मौका अगर नहीं है तो उस माँ वकालतन तम कुर्बानी दूजा ते करा सके, कोई हर्ज नहीं।
1: मुफ्ती साहब तुमने फरमाया कि जो निको जानवर है उसकी कुर्बानी जो है एक इंसान की तरफ से अदा हो जाएगी, लेकिन अगर बड़ो जानवर है तो 7 आदमी उसमें शरीक हो सके, और किसी कार के भी 4 आदमी हैं, वी चाहें कि उनका अकीका एक दो बकाया, क्या वे भी इसमें शामिल
0: बिल्कुल
1: कर हो सके?
0: बिल्कुल अकी को भी हो सके।
1: ठीक।

0: और ये तमाम फतावा की किताबों के बीच मसला
1: जी
0: लिखे हुआ
1: ठीक
0: कि अकीका भी, क्योंकि उसके उस जानवर के वास्ते भी वही शरायत है
1: जी
0: जिड़ी कुर्बानी का जानवर के वास्ते है,
1: ठीक
0: यानी उम्र की भाई कैद होनी चाहिए, ऐबन ते पाक होना चाहिए,
1: जी
0: तो वही जानवर अकीका ना भी लगे वही कुर्बानी ना भी लगे।
1: जी
0: और एक आदमी अगर बड़ा जानवर खरीदे उसमें अगर बच्चों का अकीका के वास्ते कोई जैसा मुतयन कर ले
1: जी
0: तो वे अकीको भी अदा हो जाएगा, यो फोका के नज़दीक मुतफक यो फैसलो है।
1: जी मुफ्ती साहब, चलता चलता, क्योंकि हर एक इंसान चाहे कि बिना मजदूरी मिलनी चाहिए, कोई भी हूँ काम करूँ इसको बिना अजर सवाब मिलना चाहिए, तो कुर्बानी को अजर व सवाब किया
0: यो सवाल खुद नबी पाक सल्लल्लाहु
1: सल्लल्लाहु अलैहि
0: ना
1: वसल्लम।
0: सहाबा इकराम ने किया था।
1: जी
0: और नबी अलैहिस्सलाम जिस पर कुर्बानी का मुतलक फरमाया कि
1: ठीक
0: जिसके कुल भी ताकत हो कुर्बानी करने की
1: जी
0: वो कुर्बानी ना करें तो वो मारी ईदगाह मनावे,
1: ठीक
0: यानी एक वईद फरमाई,
1: जी
0: यानी बावजूद वसत के अगर कोई इसमें कंजूसी करे तो वो गोया उसको यो अमल इतना नापसंदीदा है कि
1: ठीक
0: ऐसा शख्स ना बाकी ईमान आलंग के नाल ईद में भी शामिल नहीं होना चाहिए,
1: जी
0: हो सके इसकी नौसत की वजह से बाकिया ना के ऊपर भी कोई असर पै जाए।
1: जी
0: एक चीज़ तो यह वईद फरमा छोड़ी,
1: ठीक
0: नाले साहबा ने पूछा कि या रसूल सलम
1: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
0: यह मा हाजिल उजाही यो कुर्बानी के चीज़ है,
1: जी
0: इसका जवाब माँ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा सुनना तो अभी कुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि यह थारा बाप दादा जुड़ा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम
1: जी
0: यह उनकी सुन्नत है।
1: जी
0: तो फिर उनने एक सवाल और किया कि
1: जी
0: वमा फी है या रसूल अल्लाह,
1: जी
0: यानी हम जानवर तो ज़बह करांगा कुर्बान करांगा इसमें हम ना ज़बह करके थावे गो के
1: ठीक
0: जिस
1: जी
0: थारी जबान माँ कि आमना इसकी के मजदूरी था
1: जी
0: वैगी, तो यो खुद उनने नबी पाक सल्लल्लाहु
1: सल्लल्लाहु
0: अलैहि
1: अलैहि
0: वसल्लम
1: वसल्लम
0: से सवाल किया
1: जी
0: तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बेकुल इशारतिन हसना, यानी जानवर का जिस्म पर जितना बाल होएगा
1: जी
0: हर बाल के बदले एक नेकी था वैगी
1: सुभान अल्लाह
0: कुर्बानी करने वाला।
1: जी
0: साहबा ने एक मसला और हल किया
1: जी
0: क्योंकि ऊँट का बाल मोटा मोटा में,
1: ठीक
0: बकरी का मोटा मोटा में, गाम का भी बाल तकरीबन मोटा में, पेड़ की ऊन जड़ी हुआ वह बहुत बारीक हुआ है,
1: गिनने भी
0: वह
1: मुश्किल है
0: गिननी बहुत मुश्किल
1: जी
0: है, वे हाथ में भी नहीं आता,
1: ठीक
0: उसका बारे में फसूफ या रसूल अल्लाह,
1: सब
0: यानी ऊन का बारे में थारो के ख्याल है थारे क्या क्या हुक्म है।
1: ठीक
0: तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेकुल इशारत में सूफ हसना,
1: जी
0: यानी ऊन का हर बाल का बदला में भी अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करेगा,
1: जी
0: तो इससे बात गया अजर के मिलना चाहिए,
1: क्या बात
0: यानी
1: है
0: अल्लाह ताला अगर अजर ना दे
1: जी
0: तो
1: हम कुछ नहीं
0: हम
1: कर
0: कहाँ कि
1: सकते
0: अदल अल्लाह को यही है,
1: जी
0: लेकिन अल्लाह की अल्लाह को फजल यो है
1: जी
0: कि एक तरफ उसको हुक्म पूरा करने लगा हुआ,
1: ठीक
0: यानी अल्लाह पर एहसान तो नहीं करता ना,
1: जी
0: अल्लाह को हुक्म पूरा करने लगा हुआ
1: जी
0: उस हुक्म ना एक आदमी एक मुलाजिम हुकूमत को डिपार्टमेंट को वो ड्यूटी दिया
1: ठीक
0: उससे बाद क्या वो डिपार्टमेंट का मेरा एहसान है थारे ऊपर कह सके, हरगिज़
1: नहीं
0: नहीं कह सकता,
1: जी
0: देखिए जो तुम्हारा मुलाजिम है
1: ठीक
0: इस तरह अल्लाह ताला ने अपना बंदा ना अपना बंदी ने हुक्म देता जानवर कुर्बान करो
1: जी
0: नमाज पढ़ो हज करो
1: जी
0: रोजा रखो दीगर आकाम, तो ये अल्लाह को हुक्म है
1: ठीक
0: इसका पूरा करण पर अक्ल तयोग है या इत अजर को कोई ना नहीं होना चाहिए,
1: जी
0: लेकिन अल्लाह ताला बड़ो मेहरबान है
1: मेहरबानी अल्लाह की
0: कि अल्लाह ताला जानवर के ऊपर जितना बाल है
1: जी
0: उतनी नेकी अल्लाह ताला उसका
1: ठीक
0: फिर जितना इखलास होगा वो अल्लाह ताला
1: जी
0: उतना, और दूजा यो भी है खुश दिली के नाल कुर्बानी करनी चाहिए,
1: जी
0: कई लोग हमने देखा उनने बैठो जबा कर छोड़े और पीछे बढ़ेड़ा ने लाली लड़ाई और जो चंगो बैठा था धान यो लगा था हमने हाल वास्ते हुआ था और जब सिलसिला खत्म हो गया,
1: जी
0: लेकिन कई लोग इस किस्म की गाल कर लें
1: जी
0: और जी तुमने ये जात मानता नहीं गोया अगर उन्हें इसी गाल की आपकी कुर्बानी जाया कर छोड़ी,
1: ठीक
0: यानी खुश दिली के नाल
1: जी
0: वो जानवर जो बहुत ज्यादा महबूब हुआ है
1: जी
0: पसंदीदा हुआ है
1: जी
0: वो जानवर इसी वास्ते वो ऐब गिणिया, तो वे यानी ये ऐब नहीं होना चाहिए इन ऐबन ते पाक जानवर
1: जी
0: अल्लाह ताला मंगे,
1: जी
0: तो खुश दिली के नाल जो इंसान कुर्बान करें जिस वक्त छुरी उस जानवर का गाल के ऊपर फेरें
1: जी
0: उसको खून को कतरो जमीन पर पहुंचने से पहला अल्लाह कह वो कबूल हो जाए,
1: सुभान अल्लाह
0: ये अल्लाह ताला इस पर अजर अता करें
1: जी
0: तो ये अल्लाह ताला की
1: जी
0: इनायत है अल्लाह ताला को फजल है।
1: जी मुफ्ती साहब, शुरू का सवाल जो पे किया था मैंने दोबारा एक उसमें थोड़ी वजाहत जरूरत है कि तुमने फरमाया था कि कुर्बानी जो मांस है कारी में इस्तेमाल कर सकें या रिश्तेदारों में बांट सकें या आम मुसलमानों में भी दे सकें, कई लोग इस वजह से भी कुर्बानी नहीं करता कि यो सारे पहुँच नहीं सकते रिश्तेदारों में या हमसाए में पहुँच ही नहीं सकते, या फिर क्या करें कि वे निका निका तिका करके दिए कि जिनते कुछ अगर अगर किसी कार में चले भी तो उससे बंट दो भी कुछ नहीं, थोड़ी इसकी और एक वजह
0: बहरहाल यो एक तबरूक है
1: जी
0: जित तक पहुँचा सके हो तक
1: ठीक
0: पहुँचा छोड़ो,
1: जी
0: ज़रूरी नहीं है कि हर एक तक पहुँचे, कई
1: जी
0: लोग इस वास्ते नहीं करता कि जानवर निको है।

0: सुत्रों है नहीं, खानदान मारो बड़ा है,
1: जी
0: दोस्त अहबाब मारा बहुत ज्यादा है,
1: ठीक
0: उन तक नहीं। और कई लोग इस पर गिलो ग्रावा भी करने लग जाए,
1: जी
0: और जितने हमने कुर्बानी की थी, बल्कि हम अपनी बरादरी को या कहा कि यानी हमारी गुजर बकरवाल बरादरी माँ,
1: जी
0: कई जगह में यह चीज़ है कि जिसने कुर्बानी करनी हुए वे पहला सारा वो खास खास रिश्तेदार ना सदे भी,
1: जी
0: हमसाए ना भी सदे,
1: ठीक
0: और जिसना अगर वे नहीं सदसे
1: जी
0: वे कुर्बानी को ऐसा भी नहीं लेता, वे मुंह पर मारे गाते उनना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जहालत
1: जी
0: है, इसको इस्लाम के नाल कोई नहीं।
1: ठीक
0: यो वो जानवर है जो अल्लाह की राह में कुर्बान होया है, इसको अगर मामूली जो तिक्को भी हाथ आ जाए
1: ठीक
0: वो भी कबूल कर लेना चाहिए,
1: बेशक
0: उसमें गिला शिकवा नहीं करना चाहिए, और जब तक पहुंच सका पहुंचा छोड़ना चाहिए।
1: ठीक
0: और नहीं पहुंच तो कई लोग इस वजह से कुर्बानी नहीं करता, उनना ऐसा नहीं करना चाहिए। मांस पहुँचाना कोई ज़रूरी नहीं है,
1: जी
0: कुर्बानी करनी ज़रूरी है, अगर
1: बिल्कुल
0: साहिब निसाब है उसके वास्ते कुर्बानी करनी ज़रूरी है। मांस पहुँचाना जब तक पहुंच सके तारे बसहूलत वो तक पहुँचा छोड़ना चाहिए,
1: जी
0: वरना इसकी वजह से कुर्बानी ना करना या इसमा गिल्ला शिकवा ये जड़ा करें
1: जी
0: वे बहुत, ये जमाने जाहिलियत की गालें, ये बैठ क्या की वतानो तशनी है
1: ठीक
0: उसने कह सका, ये वे मामूली गालें, इनकी तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि असल जड़ा हुक्म है वो शुक्र करना चाहिए कि मारा फलाना शख्स ने कुर्बानी की, अल्लाह उसने कबूल करे,
1: जी
0: उसकी दुआ करनी चाहिए
1: जी
0: बजाय इसके कि गिला शिकवा करना चाहिए।
1: जी तो मुफ्ती साहब, आखिर माँ थारी तरफों इब्राहिमी पैगाम, इस जुड़िया ईद है, ईद उजहा है, इसके मुतालिक।
0: इब्राहिमी पैगाम तो यही है, कुर्बानी को जज्बो, जिस तरह सहाबाए किराम ने जानवरों की कुर्बानी दी है उसके नाल उनने अपनी जान की कुर्बानी भी दी है
1: जी
0: दीन इस्लाम के वास्ते।
1: ठीक
0: दीन इस्लाम को ये शियार इस्लाम है, यानी जिहड़ी कुर्बानी है, यानी शियार के किसी निशानी ना,
1: जी
0: इस ना जिंदा करण वास्ते है। कई मालदार हैं वे बावजूद वसत का कुर्बानी नहीं करता, उनके वास्ते एक बड़ा पैगाम यू है कि उन्हें खुद सोचना चाहिए अल्लाह ताला ने जो माल उन्हें देता है। कई लोग चढ़ाएं वे एक एक पैसों जमा कर गए, यानी वे खुद साहिब निसाब नहीं होता
1: जी
0: लेकिन उनको दिल एक शौक रखा है,
1: ठीक
0: लेकिन वे कुछ मेहनत मशक्कत कुछ कर गए वे भी कुर्बानी के बीच हिस्सों लेंगी, और इसमें बहुत सहूलत है क्योंकि 7 आदमी मिल गया अगर एक जानवर खरीदेगा, 33,000 में अगर एक जानवर था वह
1: जी
0: 7 तकसीम करेगा तो ये इतना लोड एक उनके ऊपर नहीं पैसा है।
1: ठीक
0: ते शरीयत की सहूलत है, युरीदुल्ला बेकुमल युसरा वला युरीदु बेकुमल उस, अल्लाह थारे नाल आसानी को मामला करे
1: जी
0: तंगी को मामला नहीं करता। तो वे जज्बात होना चाहिए जड़ा खलीलुल्लाह अलैहि सलातो सलाम का, और जिस तरह हज़रत नबी पाक सल्लम या नबी पाक सल्लम का सहाबा बुजुर्गान ने दीन जिस तरह उनने पैगाम इब्राहिमी के ऊपर पूरी ज़िंदगी अमल किया
1: जी
0: और लोगों के वास्ते अपना अमली नमूना छोड़ के गया है, तो आज का मुसलमाना ना भी ये अपना बुजुर्ग या अपना तमाम असलाफ जड़ा है ये मद्देनजर रख के तो इस पैगाम इब्राहिमी ना आम करना चाहिए।
1: मुफ्ती मंजूर अहमद कासमी साहब, तमने अपनो कीमती वक्त दितो, कुर्बानी का हवाला नाल मसला मसाइल दसिया, थारो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
2: जी सामीन, तम गलबात सुन रहा था।

समय नाप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक वानी। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से गोजरी खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।

0: लत में फसिया नौजवानों की बाजाबादकारी वास्ते हर मुमकिन इकदाम किया जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल न जम्मू तू इस अभियान की शुरुआत की थी। तालीमी अदारों के नाल नाल मुख्तलिफ मकामों और बेदारी प्रोग्रामों को इनकाद किया जा रहा है ते लोगों ने मंशियात का मुजर असरों तू वाकफ किया जा रहा है। मंशियात बारे एल जी मनोज सिन्हा को पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
0: जम्मू कश्मीर में नौजवानों ने इस बिद तू दूर रखने वास्ते लाजमी इकदामों बारे एक आम शहरी खान बलाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हूं। क्यों
2: बात करना चाहूंगा आजकल के माशरे पे और हमारी नौजवान पीढ़ी पे जो नशे के दलदल में बुरी तरह से फंसती जा रही है। गुजारिश करता हूँ आजकल के जवानों को कि हमारी गवर्नमेंट ने अच्छी सारी स्पॉन्सरिंग स्कीम्स लाई हैं, कोशिश करें इस दलदल से निकलें, अपना फ्यूचर बनाएं, कोई बिजनेस खड़ा करें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। हमारी पुलिस बहुत अच्छा रोल निभा रही है लेकिन शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख न अपना महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्य मौजुओं पर अवाम नाल अपना ख्याल गुजार करेगा। आकाशवाणी पर नशर होने वाला इस महाना प्रोग्राम की यह 174वीं किस्त होगी। इस प्रोग्राम वास्ते लोग अपनी सलाह टोल फ्री नंबर 7800111800 पर तोड़ सकें। तजावीज नरेंद्र मोदी ऐप या माई गो ओपन फोरम पर भी 29 मई तक टोरी जा सकें। आम लोग इस मकसद वास्ते 1922 पर एक मिस कॉल भी दे सकें। सेहत तिबी तालीम तक तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान बड़गाम हल्का का तालीमी होती भी निगहदाश्त का मंजरनामा को जायजो लियो। उन्होंने शोभा में जारी स्कीमों की मौसर अमलावरी पर जोर दितो। उन्होंने कहो जे हल्का का दूर दराज इलाकों में लोगों ने बेहतर तिबी सहूलियात दस्तियाब करान में काय भी कसर बाकी नहीं रखी जानी चाहिए। शोभो तालीम समाज में एक मस्बत बदलाव आने में कलीदी रोल अदा करे। ताहम वेला की लोड़ है जे शोभा तालीम न जदीदियत नाल जोड़ने नाल नाल इस में जदीद तकाजों का मुताबक बदलाव आने जाए। इस बारे दुबई में मुकीम एक बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तालीमदान ते सस्टेनेबिलिटी की पैरोकार डॉक्टर हलीमा सादिया ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हूं। क्यों
3: सबसे ज्यादा जो अहम इस वक्त जरूरत है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि हमारी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ने की जरूरत है। हम अपनी तालीम को रियल लाइफ से जोड़ करके सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पर वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। तो इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है और उसे इस बात के लिए भी तैयार करना है कि ये जो ग्लोब है या ये जो यूनिवर्स है, ये जो वर्ल्ड है, ये हमारे पास एक अमानत है और हम उसके कस्टोडियन है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी न सिर्फ ये कि अडल्ट्स पे है बल्कि बच्चों पे है, क्योंकि बच्चे तो ज्यादा उसका इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यूचर में। अडल्ट तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, इन बच्चों को ही आगे फेस करना है उनके चैलेंजेस को। तो हम उन्हें स्कूल एजुकेशन के साथ साथ इस स्कूल एजुकेशन से ही उन चैलेंजेस से रूबरू कराएं।
0: आकाशवाणी श्रीनगर का एक साबो प्रोग्राम एजुकेटिव मोहम्मद अशरफ भट्ट इस वेले रावलपुरा श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर इंतकाल कर गया। उनकी उम्र 76 साल थी ते उन्होंने 37 साल तक आकाशवाणी श्रीनगर में अपना फ़र्ज़ अंजाम दिता। आकाशवाणी श्रीनगर का सरबराह गुरबिंदर सिंह ते स्टेशन का दूजा अमला ने भी उनका इंतकाल पर दुख ते सदमा को इजहार करते हुए सोगवार कुंभा के नाल ताजियत की है। साबक ब्रॉडकास्टर अब्दुल रहमान भट्ट ने भी मरहूम का इंतकाल पर दुख को इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का पूरा अमला ने भी मरहूम का इंतकाल पर दुख को इजहार करते हुए उनकी जन्नत नशीनी वास्ते दुआ की। दूरदर्शन का साबक एडीजी डॉक्टर रफीक मसूदी ने मरहूम का इंतकाल पर दुख को इजहार करते हुए इन लफ्जों में खराज अकीदत अदा की।
4: मेरे साथी एक बहुत ही पुरखलूस शख्स थे और जो काम करते थे वो लगन से करते थे, मेहनत से करते थे, बहुत ईमानदारी से करते थे। इनके साथ एक फैमिली रिलेशंस भी रही हैं, کیونکہ ریڈیو کالونی میں جس کو

0: में रहते थे, नीचे वाले क्वार्टर में रहता था, ये ऊपर वाले क्वार्टर में रहते थे। और दूसरा एक रिलेशन भी बनता था, इनके बच्चे मेरे बच्चों के बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं और हर दुख सुख में मेरे साथ रहते थे। तो ये इनका जो इंतकाल है, ये पूरी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान।
1: आकाशवाणी श्रीनगर का साबक एडीजी बशीर आरफ ने मरहूम ना इन लफ्जा में खराज अकीदत अदा की।
2: मोहम्मद अशरफ भट्ट एक तो वो खुददार आदमी थे बहुत, दूसरा वो ट्रबल शूटर थे। कोई भी काम रहे दफ्तर का खास तौर से या किसी का जाती काम, वो पेश पेश रहते थे। मैंने कभी उनको किसी को सताते हुए, किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा दफ्तर में या दफ्तर से बाहर। हमेशा दूसरों की मदद, और जो भी काम उनको सौंपा गया, मेरे साथ उन्होंने काम किया है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में, बड़े पुरखलूस शख्सियत थे और काम जानते थे अपना ब्रॉडकास्टिंग का। दूसरा किससे किस तरह से पेश आना, ये भी उनका खासा था। अल्लाह उनकी मगफिरत करे।
1: इसके नाले गुजरी खबरों को यू बुलेटिन मुक के दियो इजाजत, रब रखो।
3: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नाश होगा।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
5: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
4: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की

0: अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर मीटिंग पे वाला वो FM 71.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट समय पेशकदमस प्रोग्राम गमी पाए हिंद खतरे।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, समय हमारे अगले ऐलान का इंतजार फरमाइए।

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: Sherbin, ke saben ko është fak lumë ka selam, po që... Ashtë ke khas mozuat, he? 2047 të këmull ko të rëki aftë bënane ka vëzir azem në rindrë modi ka azm. Në shamukt në gjemu kashmir muhim, zoro shur se jari. Vati ke mutadid ilakon me jale barik se me vëbagat or khali fasil ku nuksan. Or Jammu Division ko vadi se mazid karib lane ka naya rasta. Mazwaat ki tafseel zara der baad.
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333
5: 9018074333
6: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ,
7: वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
6: पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
7: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
6: अच्छा भाभी,
7: और हाँ मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो, और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
6: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
8: याद रहे सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा। मैं

0: करके आता हूँ।
1: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
0: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
1: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
0: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
1: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
0: माँ, अब सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
1: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
0: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: शर्मिन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी वजारती काउंसिल के साथ कल शाम होने वाली अहम मीटिंग में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फरोग देने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज और बेहतरीन तरीकाकार पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर आजम मौसूफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि इजलास में विकसित भारत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इस्लाहती इकदाम को मजीद आगे बढ़ाने पर भी गौर किया गया। 4.5 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास में तमाम काबिनी वुजरा और वुजराए ममलुकत ने शिरकत की। जराए के मुताबिक वजीर आजम ने वुजरा को हिदायत दी कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाने के मुल्क के हदफ के तहत काम किया जाए और आवाम की जिंदगी में आसानी पैदा करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वजीर आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि आवाम की जिंदगी में गैर जरूरी मुदाखलत ना हो और हुकूमत की फलाही स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमहूरी कुब्रुस के सदर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान ताल्लुक वक्त की कसौटी पर पूरा उतरे हैं और अब ये ताल्लुक एक नए मरहले यानी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में दाखिल हो रहे हैं। वजीर आजम मौसूफ ने कुब्रुस के सदर और उनके वफद का भारत आमद पर खैर मकदम करते हुए कहा कि पिछले साल उनके कुब्रुस दौरे के दौरान जिस गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया था वो दोनों मुल्कों के गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। अब एक और मौजू, पूरे जम्मू कश्मीर में नशामुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम गैर मामूली संजीदगी और शिद्दत से आगे बढ़ रही है। 11 अप्रैल को जम्मू में शुरू की गई इस मुहिम के तहत अब तक जम्मू डिवीजन और वादी के मुख्तलिफ जिलों में तकारीब और पदयात्राएं मुनक्किद की जा चुकी हैं जिनमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी क्यादत में चलाई जाने वाली 100 रोजा नशामुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम का मुद्दा मकसद नशे की बिद्दत के खिलाफ अवामी शऊर को बेदार करके इसे नेस्तोनाबूद करने का रास्ता हमवार करना है। इस सिलसिले में कल जनूबी कश्मीर के जिला शुपिया में एक और पदयात्रा का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बजाते खुद शामिल होंगे। एक रिपोर्ट के साथ शुपिया से फैयाज वानी।
4: जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से शुरू की गई 100 रोजा नशमुक्त अभियान के तहत जिला शुपिया में मनीषात के खिलाफ एक हमगीर और मौसर मुहिम जारी है जिसमें जिला इंतजामिया, पुलिस, मुख्तलिफ सरकारी महकमे, तालीमी इदारे, सिविल सोसाइटी और अवामी हल्के बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस वसी मुहिम का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को मनीषात जैसे मौलिक लानत से महफूज रखना, आवाम में बेदारी पैदा करना और मनीषात परोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाना है। जिला शोपियान में इस मुहिम के दौरान रैलियों, सिटीकर सरगर्मियों, योगा प्रोग्रामों, सरकारी स्कूलों में नुमाइशों और अवामी बेदारी सरगर्मियों का बड़े पैमाने पर इनेकाद किया गया और मुख्तलिफ मकाम पर मुनक्कदा इन प्रोग्राम में लोगों को मनीषात के तबाकुन असरात से आगाह किया गया और नौजवानों से अपील की गई कि वो सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों, खासकर खेलकूद की तरफ राकिब हों। जिला के तमाम सरकारी महकमों ने भी इस मुहिम में फाल किरदार अदा करते हुए अपने अपने अंदाज में मनीषात मुखालिफ प्रोग्राम मुनक्कद किए। इजरान सिविल सोसाइटी, स्कूली तलबा, सरकारी मुलाजमीन, रजाकार तंजीमों और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके इस मुहिम को एक अवामी तहरीक की शक्ल दी। पूरे जिले में जारी इस वसी मुहिम को डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस शोपियान मजबूत अंदाज में कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि हर तबके तक इस पैगाम को मौसर अंदाज में पहुंचाया जा सके और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर शोपियान शशीर गुप्ता, एसएसपी शोपियान चौधरी मुश्ताक अहमद, एडिशनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर नासिर लोन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जाकिर फाज और एसडीएम जनपुरा बिलाल अहमद समेत कई आला अफसरान ने भी

0: ट्रांसफार्मर का मुंह नहीं देखा है उन्होंने, तब से ये बिजली से महरूम है।
1: नहीं, एज फार एज माई रिपोर्ट्स आर कंसर्न, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले उनका ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने उसी वक्त इसके लिए एक प्रपोजल बनाया है, जो इस वक्त एसी साहब के ऑफिस में हमने सबमिट किया है। कल मोस्ट प्रोबेबली कल वो अप्रूव हो रहा है, तो सॉरी कल तो ऑफ है, बाय मंडे को इनको इशू हो जाएगा ट्रांसफार्मर।
0: आबादी को आप यकीन दिलाते हैं कि मंडे को इंशाल्लाह ट्रांसफार्मर वहां पे नस्ब हो जाएगा?
1: जी सर, डेफिनेटली।
2: मुनिडोगा सुखदार में सोमवार को ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीटी बारामुल्ला फारूक अमगनाई की यकीन दहानी। त्राल से शब्बीर भट्ट की इतला है कि सहमू त्राल में आज एक ट्रैक्टर उलट जाने के नतीजे में एक 11 साल बच्चा सालिम वलद अब्दुल सलाम गनाई मौके पर ही जान बहक हुआ। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। तहसील खाग के पुष्कर दालवाश हमचीपुरा त्रापे और दीगर कई देहात की आबादी का कहना है कि नाले गोगलडारा में पानी की माकूल फराहमी दस्तियाब न होने के बायस उन्हें आबपाशी के लिए माकूल पानी फराहम नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि नाले का मंबा पोत पेजन में मौजूद है, ताहम मंबे से पानी के बहाव को इस ढंग से मोड़ने की जरूरत है कि मजकूरा देहात की अराजी सैराब हो सके। पोषकर दालवाश त्रापे और दीगर मजकूरा देहात की आबादी का मुतालबा है कि माकूल आबपाशी सहूलियात यकीनी बनाने के लिए पानी के मंबे को फिलफौर सही ढंग से मोड़ दिया जाए ताकि उन्हें भरपूर पानी फराहम हो सके। और अब रुख करते हैं जिला गांधरबल का। गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों के अंदर सरसाम यानी मेनिनजाइटिस की बीमारी फूट पड़ी है। बताया जाता है कि अब तक इस मर्ज में कई बच्चे मुब्तिला पाए गए हैं जिनका इलाज मुआलजा भी किया जा चुका है, ताहम बीमारी पर मौसर ढंग से काबू पाने के लिए मजीद इकदाम जरूरी हैं। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान।
3: गांधरबल जिले में बच्चों में वायरल मेनिनजाइटिस यानी सरसाम बीमारी फूट पड़ी है, जिससे वालिदैन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इतलात के मुताबिक सब डिवीजन कंगन के अकाल हुसन प्रांग छत्रगुल आरी गोरीपोरा और दीगर मुलिका इलाकों में चंद रोज कबल एक दर्जन बच्चे अचानक बीमार हुए, जिससे लोगों में तश्वीश की लहर दौड़ चुकी है। वालिदैन के मुताबिक जू ही इन बच्चों में अचानक तेज बुखार आना, शदीद सर दर्द महसूस होना, काय आना, चिड़चिड़ाहट आना, रोशनी से तकलीफ महसूस होना और गर्दन तोड़ बुखार जैसे असरात नमूदार हुए, तो वालिदैन ने इन बच्चों को बिला ताखीर ट्रोमा अस्पताल कंगन और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल मुंतकल किया, जहां चंद एक बच्चों को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकल किया गया, जहां उनकी हालत अब बेहतर बताई जाती है। बच्चों में इस तरह के असरात नमूदार होने और अचानक बीमार पड़ने से न सिर्फ वालिदैन परेशान हुए, बल्कि मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया भी शश व पंज में पड़ गए। तो इस दौरान स्कूल इंतजामिया ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो इस हालत में उन बच्चों को स्कूल ना भेजें जो इस बीमारी में मुबतला हुए हैं, क्योंकि इस बीमारी से दूसरे बच्चे भी मुतासिर हो सकते हैं। इधर माहिरीन का मानना है कि ये बीमारी या तो गंदा पानी के इस्तेमाल में लाने से फूट पड़ी है या सफाई के फुकदान से फैल चुकी है, लिहाजा इस दौरान सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने की जरूरत है। इलावा अजी पानी उबाल कर पीना चाहिए। इस जिम्मे में चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल डॉक्टर बशीर अहमद ने शहरबीन को बताया कि यह खबर सुनते ही उन्होंने मुतासिर इलाकों में माहिर डॉक्टरों की टीमें रवाना की है, ताकि इस बीमारी पर बर वक्त काबू पाया जाए, और साथ ही IEC कैंपेन के तहत इन इलाकों में जानकारी कैंप्स भी मुनक्कद किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस बीमारी पर तकरीबन काबू पाया गया है, अलबत्ता लोगों को चाहिए कि वो एहतियात बरतें, साफ पानी इस्तेमाल में लाएं और सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, जरूरत पड़ने पर माहिर डॉक्टरों से मशवरा तलब करें, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें।
2: रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। जम्मू डिवीजन को कश्मीर डिवीजन से करीबतर करने का एक और रास्ता निकालने की काविशें अब बाजाबता शुरू हुई हैं। इतिलात के मुताबिक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कटरा रियासी नंदीमर्ग कुलगाम हाईवे सर्किट का DPR तैयार करने की खातिर टेंडरिंग का अमल शुरू हो चुका है। वाजिर है कि मजकूरा हाईवे सर्किट NH-44 के साथ जुड़ जाने के तुफैल जम्मू और वादी के बीच का फासला कम करने में मजीद मदद मिलेगी। याद रहे कि शहरबीन में पिछले चंद साल के दौरान इस सर्किट की तामीर के लिए आवामी मुतालबात कई बार नष्ट किए गए और मुतालिका हुकाम तक भी पहुंचाए गए। बिलाखिर आवाम का ये ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आने लगा है। एक रिपोर्ट के साथ जाहिद मलिक।
4: नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जम्मू और कश्मीर के दरमियान राबता मजबूत बनाने के लिए मौजूदा 4 लेन कटरा रियासी

मौहर गुलाबगढ़ नंदीमर्ग कुलगाम हाईवे कॉरिडोर के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की बोलियां तलब कर ली है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ये मौजूदा कॉरिडोर NH-44 से मुंसलक होगा और जम्मू और कश्मीर के कहीं पहाड़ी और दूर दराज इलाकों से गुजरेगा, जिससे खित्ते के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फरोग मिलेगा। NHAI के रीजनल ऑफिस जम्मू की जानिब से कंसल्टेंसी खिदमात के लिए टेंडर जारी किया गया है। इस मंसूबे में कटरा रियासी से कुलगाम तक इस शाहरा को फोर लेन बनाने के लिए जामा DPR की तैयारी शामिल है। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे से बैनुल इलाकाई रबते में बेहतरी आएगी, सफर का वक्त कम होगा और पहाड़ी इजला में सियाहत तिजारत और माशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। मौजूदा शाहरा माहौर गुलाबगढ़ और नंदी जैसे दूर इब्तदा इलाकों को हर मौसम में बेहतर सड़क रबता फराहम करेगी। टेंडर नोटिस के मुताबिक DPR कंसल्टेंसी में फिजिबिलिटी स्टडीज, ट्रैफिक

0: और माशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। मौजूदा शायरा माहौर गुलाबगढ़ और नंदी मर्ग जैसे दूर इब्तदा इलाकों को हर मौसम में बेहतर सड़क रबता फराहम करेगी। टेंडर नोटिस के मुताबिक DPR कंसल्टेंसी में फिजिबिलिटी स्टडीज, ट्रैफिक सर्वे, अलाइनमेंट प्लानिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन और दिगर तकनीकी जायजे शामिल होंगे। NHAI ने ओपन टेंडर के जरिए बोलियां तलब की है, जबकि बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 22 जून 2026 मुकर्रर की गई है। इधर इस खबर के सामने आने के बाद पूरे खिते में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आवाम का कहना है कि जम्मू डिवीजन को कश्मीर डिवीजन के साथ जोड़ने का बरसों पुराना ख्वाब अब हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। यह सड़क जम्मू डिवीजन को बारास्ता रियासी गुलाबगढ़, नंदी मार्ग और कुलगाम के जरिए कश्मीर डिवीजन से जोड़ेगी, जिससे दोनों खितों के दरमियान सफर नहायत कम वक्त में तय हो सकेगा। शहरबीन के रियासी और कुलगाम के नुमाइंदों ने भी गुज़श्ता कई बरसों से इस सड़क की तामीर के लिए मुसलसल आवाज उठाते रहे हैं। शहरबीन ने कई बार अवामी सतह पर और अपने प्लेटफार्म के जरिए हुकूमत तक इस मुतालबे को पहुंचाया ताकि इस अहम शाहरा की तामीर मुमकिन बन सके। आज जब ये खबर सामने आई तो लोगों ने इसे अवामी जदोजहद की कामयाबी करार दिया। माहौर, गुलाबगढ़, नंदीमर्ग और कुलगाम के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अवाम का कहना है कि इशारे की तामीर के बाद जम्मू सूबा और कश्मीर सूबा के दरमियान सफर इंतहाई आसान और मुख्तसर हो जाएगा, जबकि तिजारत, सियाहत और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे।
1: जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि कश्मीर में दीन इस्लाम के बानी शाह हमदान हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह का उर्से पाक कल अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में मुनाकिद होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जमीयत अहमदानिया के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने उर्से शाह हमदान के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खिदमात को जमाना साज करार दिया है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
5: अरे, ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लैबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
9: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
11: समीन, हम आपको बता दें कि ईद उल अजहा के सिलसिले में आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है कुर्बानी के आदाब व अहकाम। आज आप इसकी पहली किस्त सुनेंगे। समीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवा हैं मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलें प्रोग्राम हम सफर आज रात 9 बजे।
12: अरे माँ, देखो एक्सीडेंट। रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ। रहने दे बेटा, एक

0: नहीं, झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
0: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
0: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ, अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
0: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
0: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: आदाब, ये छ आकाश वाणी श्रीनगर, 7:30 सपद पेश खबरनामा। गोड़ अख नजर अज खास खास खबरन पे। भारत तो साइप्रसन कर् मुख्तलिफ शोबन मज अथवास बटावन कें कहान मफाहमत नामन पे दस्तखत। वजीर अजम नरेंद्र मोदी बगरावन पगह कुनवुहमस रोजगार मेलस दौरान 51,000 नौजवानन मज तकरुरनामा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तुल श्री माता वैष्णो देवी स्थापनस पे नवस वैष्णो देवी भवनस दस। तो जम्मू कश्मीर मुनशियात निश पाक थाने बापत प्रथ सूत्रस पे असरदार कदम जारी। वन पेश खबर तफसील सान। भारत तो साइप्रसन कर् आज नवी दिल्ली में दहशतगर्दी हुन मुकाबल करने खातर अख मुश्तरक वर्किंग ग्रुप बनावनस नवीनकारी तो टेक्नोलॉजी आला तलीम तहकीक तो सकाफती अथवास कायम करने हिवन शोबन मज मफाहमत नामन पे दस्तखत। यम दस्तखत आए वजीर अजम नरेंद्र मोदी तो साइप्रस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलिवसस दरमियान दोशवें मुल्कन हंद पानवन रिश्ते वसवार बनावनस मुतलिक कथ बात दौरान कर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोन अकिस मुश्तरक बयानस दौरान दोशवयो मुल्को इन वाले 5 वर्यन में सरमाकारी दोगन कर फैसला कर्मुत। वजीर अजम नरेंद्र मोदी बगरावन पगह कुनवुहमस रोजगार मेलस दौरान मुख्तलिफ महकमन में तैनात कर आमत 51,000 खत ज्यादा नौजवान मज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दस तकरुरनामा। अथ मौक पे कर वजीर अजम इन नौजवान खिताब ते रोजगार मेल मुल्कस में 27 जायन मुनद कर रोजगार मेलन से बुनियादी अहमियत हासिल तो यमो दस वनुक तमाम दुरुस्त मुल्कस मज 12 लाख ऑर्डर बगरान आमित। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तुल श्री माता वैष्णो देवी स्थापनस में श्रद्धालुन हंद खातर बनावन आमतिस वैष्णो देवी भवनस दस। अत मौक पे खिताब करावन एलजीएन जे नव सहूलियत आयतन रोजन सहित बड़ी अकीदत मंदन हंद कयामुक तजुर्ब हना बे तिकाज यह श्रद्धालुन हंद रश नजर तल थवित आरामदेह पट तमीर कर आमुत। अम ब्रोह लज रात कटरास मज एलजीएन अक्षय पात्रा फाउंडेशन हंदिस मरकजी लंगरस कनकन। जम्मू कश्मीर मनशियात के लानत निश बचाने खातर से हतस दोहन हंदिस नशा मुक्त अभियान तहत सरगर्मी वसान जारी। मुनशियात ढांचे मूल मंजि प्रार्थन तो अत मज हन आमद नौजवान वापस अन्न खातर प्रथ मुमकिन कदम तुलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पान नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान नजर गुजर थवित तो तम मुख्तलिफ जिलन में पदयात्रा तो बेदारी हंदन प्रोग्रामन हज क्यादत कर अत सिलसिले में करन तम पगह शुपियनस मज मुनद कर आम पदयात्रा में शिरकत। पेश मुनशियात मुतलिक एल जी मनोज सिन्हा सुंद पैगाम।
4: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
3: जम्मू कश्मीर में नौजवान अम बदात निश दूर थाने खातर तुलान इकदाम हंद हवाल वोन एक आम शहरी खान बिलालन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कर।
5: नौजवान पीढ़ी वस के मुबतला से गम ज्यादा टुवर्ड्स ड्रग्स। बह कर गुजारिश कि सीस गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग स्कीम अनम कोशिश करो पन पान करो थोड़ा डाइवर्ट टुवर्ड्स बिजनेस टुवर्ड्स जॉब्स टुवर्ड्स सोशल सर्विसेज तो पन पान मत करो खराब। यह त्युत वबा इस वबा हे सोन सोर माश तबाह कर गुजारिश कर सो पुलिस तिम पे थोड़ा बे स्ट्रिकनेस थविन अत।
3: अथ दौरान उन सेहत तबी तलीम वजीर सगीना तुहन मुनशियात कापी रटने खतर गलीमी इदारन तो कोचिंग सेंटर में स्क्रीनिंग हज अमल लाजमी बनाने यन युत जन अत बदआदतस मज हन आमत नौजवान हज निशानदेही सपदे। वजीर आज श्रीनगर ड्रग डी एडिक्शनस मुतलिक अकिस मीटिंग खिताब कर। پولیسن نشس خلاف مہم جاری تھوان امروہی کرنا کس ظہیر احمد ٹنچ تو بشیر احمد ٹنچ نو ڈرگ سمگلرن ہند

ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: देखभाल की जिम्मेदारी न सिर्फ ये कि अडल्ट्स पे है बल्कि बच्चों पे है, क्योंकि बच्चे तो ज्यादा उसका इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यूचर में। अडल्ट तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं, इन बच्चों को ही आगे फेस करना है उनके चैलेंजेस को। तो हम उन्हें स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एजुकेशन से ही उन चैलेंजेस से रूबरू कराएं।
1: जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करने का अमल जारी है। इस ताल्लुक से डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: अभी तक हमारे पास अराउंड 30,000 से ऊपर एप्लीकेशंस आई हैं जिन्हें रजिस्टर किया है स्टूडेंट्स ने। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि उनको एक बात का ख्याल रखना है, जो हम देख रहे हैं अभी तक जो जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं उन्होंने कॉलेज भी मिनिमम रखे हैं, चॉइस भी मिनिमम रखी है। उससे यह है कि जैसे जितना इनटेक किसी प्रोग्राम का है उससे 20 times 30 times एप्लीकेंट्स उसमें आ रहे हैं। स्टूडेंट को लग रहा है मुझे इसमें एडमिशन मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट को ख्याल करना है कि एडमिशन उसको मिलेगा ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड द मेरिट। तो इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है स्टूडेंट को। 27 तारीख तक हम ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस, चेंज ऑफ प्रेफरेंस ओपन रखेंगे स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट अपने कॉलेज की प्रेफरेंस, अपने प्रोग्राम की प्रेफरेंस चेंज कर सकता है। तो 27 शाम को ये बंद हो जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। आज शाम से हम एक रैंक लिस्ट इशू कर रहे हैं जिससे उनको आइडिया आएगा कि उनकी क्या पोजिशन है अगर किसी कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया है। दूसरी बात, उनको बहुत सारे कॉलेजों में अप्लाई करना चाहिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। उनके जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, मे बी दे विल गो अप टू 10-15 प्रेफरेंसेस, सो दैट देयर एडमिशन इज गारंटेड। मैं सब बच्चों को अपील करूंगा कि हमारी व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है पोर्टल पे, तो वो इमीडिएटली व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल के थ्रू उनको हम अपडेट्स देते रहेंगे।
1: जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में रोज अफजों इजाफा हो रहा है और जम्मू में दिन का दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया है। जम्मू में लू से बचने की खातिर आवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा,
3: दिन ब दिन गर्मी जो है ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सके।
1: समाज के बुजुर्ग तबके को दीगर तिब्बी मसाइल के साथ साथ बाज़ औक़ात बेकाबू ब्लड प्रेशर का भी मसला दरपेश रहता है, जिसके लिए उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है। इस बात की मजीद वजाहत कर रहे हैं बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम।
4: रिसर्च कहता है कि हर 4 बुजुर्ग अफराद में सिर्फ 1 का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। बुजुर्गों में हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये बगैर किसी वाज़े अलामत के दिमाग, दिल, गुर्दों और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर यानी 140/90 से ज्यादा स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और याददाश्त की कमजोरी का सबब बन सकता है। रोजाना ब्लड प्रेशर चेक करना, दवा वक्त पर लेना, नमक कम खाना, वॉक करना और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना बहुत जरूरी है।
1: आकाशवाणी श्रीनगर के एक साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अशरफ भट्ट आज सुबह रावलपुरा श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 76 बरस थी और उन्होंने 37 बरसों तक आकाशवाणी श्रीनगर में अपने फरायज अंजाम दिए। आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा गुरविंदर सिंह और स्टेशन के दीगर अमले ने भी उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंभी के साथ ताजियत की है। साबिक ब्रॉडकास्टर अब्दुलरहमान भट्ट ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार ने मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के पूरे अमले ने भी मरहूम के इंतकाल पर रंज का इजहार करते हुए उनकी जन्नत नशीनी के लिए दुआ की। दूरदर्शन के साबिक एडीजी डॉक्टर रफीक मसूदी ने मरहूम के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए इन अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया।
5: मेरे साथी एक बहुत ही पुरखलूस शख्स थे और जो काम करते थे वो लगन से करते थे, मेहनत से करते थे, बहुत ईमानदारी से करते थे। इनके साथ एक फैमिली रिलेशंस भी रही हैं, क्योंकि रेडियो कॉलोनी में जिस क्वार्टर में रहते थे, नीचे वाले क्वार्टर में रहता था, ऊपर वाले क्वार्टर में रहते थे। और दूसरा एक रिलेशन भी बनता था, इनके बच्चे मेरे बच्चों के बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं और हर दुख सुख में मेरे साथ रहते थे। तो ये इनका जो इंतकाल है ये पूरी फ्रेटर्निटी के लिए

0: बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान।
1: आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक एडीजी बशीर आरफ ने मरहूम को इन अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया।
2: मोहम्मद अशरफ भट्ट एक तो वो खुददार आदमी थे बहुत, दूसरा वो ट्रबल शूटर थे। कोई भी काम रहे दफ्तर का खास तौर से या किसी का जाती काम, वो पेश पेश रहते थे। मैंने कभी उनको किसी को सताते हुए, किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा दफ्तर में या दफ्तर से बाहर। हमेशा दूसरों की मदद और जो भी काम उनको सौंपा गया, मेरे साथ उन्होंने काम किया है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में, बड़े पुरखलूस शख्सियत थे और काम जानते थे अपना ब्रॉडकास्टिंग का। दूसरा किससे किस तरह से पेश आना, ये भी उनका खासा था। अल्लाह उनकी मगफिरत करे।
1: मरहूम का रस्म चारम 24 मई सुबह 10:30 बजे उनके आबाई मकबरा वाका जियारत सईद मंसूर जालडकर में अंजाम दी जाएगी। बुलंद पाया वली कामिल और कश्मीर में बानी इस्लाम हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह का 661वां उर्स मुबारक कल नहायत ही अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनकी जियारत गाह वाका खान का हिमोल्ला श्रीनगर में दुरूद असगार और खत्मातुल मौजूमात की मजालिस जारी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला नीज कई दीगर लीडरों ने भी इस उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी के इल्मी और रूहानी कमालात से जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा इस्लाम के नूर से मुनवर हुआ। जमीयत हमदानिया के सरबरा मीर वाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी उर्स शाही हमदान के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने और लोगों को आला मयार की बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। इस तालुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: पीछे हमारा जून महीने में जो स्कीम आया था मिशन युवा का, उसमें हमने 25,000 लोगों को ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे लोन्स में हमने दिए हैं। बेसिकली हम काम ही कर रहे हैं इस एरिया में सबसे ज्यादा, तो हमारा कोई ऐसे हमारा परहेज नहीं है कि किसी भी सेक्टर में बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी हमारा सेम बिहेवियर रहता है, उनको भी हम वेलकम करते हैं अपने बैंक में। उसी तरह से छोटे लोन्स डेफिनेटली हम करते हैं। एमएसएमई का जो पोर्टफोलियो हुआ हमारा 20-22 हजार करोड़ का है।
1: नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज नमाज जुमा आसर शरीफ दरगाह हजरत बल में अदा की और वहां आलमी इंसानियत की बका और जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए दुआ की। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने सिदरा जम्मू में हवाई इन्हदामी कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नज़र। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर मुकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.5 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तूते आफ्ताब सुबह 5:24 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:31 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
4: आदाब। आज का तबसिरा लेकर मैं नूर सबा। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबी फहरिस्तों की ताज़ा नज़रसानी और 72 लाख से जायद वोटरों की शमूलियत दरअसल जमहूरियत की जड़ों को मजीद मजबूत बनाने की एक अहम पेशरफ्त है। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा हतमी इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक इस मरतबा तकरीबन 3.5 लाख नए वोटरों का इंदराज अमल में आया, जिससे वाजह होता है कि अवाम खसूसा नौजवान नस्ल जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मजमू वोटरों में तकरीबन 36 लाख मर्द, 35 लाख से ज्यादा ख्वातीन जबकि 100 से ज्यादा थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं। गांव की सतह पर कायम पंचायती इदारे किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियाद तस्वर किए जाते हैं क्योंकि यही इदारे आवाम को बराह रास्त फैसला साजी के अमल में शरीक करते हैं। जब गांव का आम शहरी अपने इलाके के मसाइल जरूरियात और तरक्याती तरजीहत के तयन में शामिल होता है तो तरक्की का अमल ज्यादा मौसर शिफाफ और अवामी उमंगों के मुताबिक बनता है। रियासी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंचायत इंतखाबी फहरिस्तों की कामयाब तकमील इस बात की अलामत है कि अवाम में जमहूरी शऊर बेदार हो रहा है। खास तौर पर नौजवान की बड़ी तादाद का बतौर वोटर इंदराज ये जाहिर करता है कि नई नस्ल अपने मुस्तकबिल और अपने इलाकों की तामीर और तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करना चाहती है। ये रुझान न सिर्फ जमहूरी इदारों को मजबूत बनाना है बल्कि समाजी और सियासी बेदारी को भी फरोग देता है। पंचायती निज़ाम की असल रूह अवामी मुशावरत है گاؤں کی سڑکیں، پانی، بجلی، صحت مراکز، تعلیمی سہولیات اور روزگار سے متعلق منصوبے اس وقت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جب ان کی منصوبہ بندی مقامی لوگوں کی رائے اور ضروریات کو سامنے رکھ کر کی جائے۔ مقامی سطح پر

वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। अब आइए सामईन रुख करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ। अगरचे पाकिस्तान मगरबी एशिया में जंग को रोकने या हरीफ ममालिक के दरमियान सलाह समझौता करने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है, ताहम दुनिया के बड़े ममालिक पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान के किरदार को इस मामले में ज्यादा अहम और ज्यादा मौसर समझते हैं। चिनाचे इसी तनाजुर में गुज़श्ता दिनों रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा कि पाकिस्तान मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में सहूलत फराहम करने में किरदार अदा तो कर रहा है, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया कि हिंदुस्तान अपने सफारती तजुर्बे की वजह से तवील मुद्दती सालिस के तौर पर उभर सकता है। नई दिल्ली में लारूफ ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान राबते के चैलेंजेस कायम करने में मदद कर रहा है ताकि फौरी मसाइल को हल किया जा सके। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि अगर दोनों फरीक एक मुस्तकिल या तवील मुद्दती सालिस की तलाश में हैं, तो भारत इस किरदार के लिए मौजू हो सकता है। लारूफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर वो तवील मुद्दती सालिस की तलाश करते हैं तो ये किरदार भारत अपने वसी सफारती तजुर्बे को देखते हुए अदा कर सकता है। ये रिमार्क्स एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब आलमी तवज्जा खित्ते में महीनों के अदम इस्तेकाम के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर मरकूज है। अपने ताजा तरीन दौरे के दौरान लारूफ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की। मोदी और वजीर खारजा एस जे शंकर इलाकाई और आलमी मसाइल बशमूल यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाजात पर खुलकर बात हुई। बातचीत के दौरान हिंदुस्तान ने मुसलसल इस बात को बरकरार रखा है कि बैनुल अक्वामी तनाजात को हल करने में बातचीत और सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। जाहिर है कि अब दुनिया पर यह बात वाजिया हो गई है कि हिंदुस्तान के खारजा ताल्लुकात आलमी रसाई और इक्तिसादी फायदा दोनों में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। इसकी बड़ी मार्केट के साइज और स्ट्रैटेजिक शराकत दारियों की मदद से भारत ने कामयाबी के साथ अमेरिका और रूस दोनों के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार किए हैं, जबकि पाकिस्तान की सफारतकारी बुनियादी तौर पर चीन और मशरक वस्ता की रियासतों के साथ ताल्लुकात को मुनज्जम करने पर मरकूज है ताकि जारी इक्तिसादी बहरानों से निकल सके। पाकिस्तान की कमजोर खारजा पॉलिसी और कमजोर ताल्लुकात की कई वजूहात है। कलीदी जोग्राफियाई सियासी इख्तिलाफात को अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिक खुदमुख्तारी की पॉलिसी को बरकरार रखता है। हिंदुस्तान की मईशियत पाकिस्तान की मईशियत से 7 गुना ज्यादा बड़ी है, जो इसे एक इंतहाई मतलूब तिजारती और सरमायाकारी पार्टनर बनाती है, जबकि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें अक्सर बैनुल अक्वामी बेलआउट पर इसके बहुत ज्यादा इनहिसार की वजह से मजबूर होती है। जबकि हिंदुस्तान एशियाई जोग्राफियाई सियासत की तश्कील के लिए G20 और एशियान जैसे फोरम्स में सरगर्म अमल है। पाकिस्तान अक्सर करीबी पड़ोसियों से सफारती तन्हाई का शिकार रहता है और चीन पाकिस्तान इक्तिसादी रहदारी जैसी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी पर बहुत ज्यादा इनहिसार करता है। दूसरी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तानियों का आलमी सियासत पर बहुत ज्यादा असर है। भारत जोग्राफियाई लिहाज से बहुत बड़ा है और आबादी और मईशत के लिहाज से पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। हिंदुस्तान हाल ही में बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है और सिर्फ अमरीका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। हिंदुस्तान की GDP इस वक्त तकरीबन $3.46 ट्रिलियन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मौजूदा GDP तकरीबन $376 बिलियन है और आलमी सतह पर 42वें नंबर पर है। भारत के पास भी बहुत आगे और दोस्ताना खारजा पॉलिसी है जिसके बड़े इत्तेहादी हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मजबूत इत्तेहादियों की कमी है। हिंदुस्तान सियासी और इक्तिसादी तौर पर काफी मुस्तकम मुल्क है, जबकि पाकिस्तान अपनी आजादी के वक्त से ही सियासी और इक्तिसादी तौर पर काफी गैर मुस्तकम रहा है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान एक अहम मालियाती बहरान से गुजर रहा है और आलमी सियासत में इसके असरात को मजीद कम करके ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। भारत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मंडी भी है और अपने सफारती असर रसूख में मजीद इजाफा कर रहा है। दुनिया में सफारती असर रसूख कायम करने में फौज मईशत के साथ साथ एक अहम किरदार अदा करती है।

हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान से तकरीबन 5 गुना बड़ी है और खुद इनसारी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है। ये दुनिया की चौथी बड़ी फौज है, लिहाजा मजमूई तौर पर हर एक हिंदुस्तानी सफारती तौर पर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मजबूत है। और तरक्की के मौजूदा रुझान को देखते हुए इस बात का इम्कान बहुत कम है कि ये तवील अरसे तक बदलेगा। सामिन प्रोग्राम के इस पड़ाव पर आइए पहले सुनते हैं ये नातिया कलाम।

0: रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु पहले ही 18 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। गुजरात टाइटंस ने भी अब 14 मुकाबले खेलकर 18 पॉइंट्स हासिल किए हैं और वो भी प्लेऑफ्स में जगह हासिल कर चुकी है। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 13 मुकाबले खेलकर 16 पॉइंट्स हासिल किए हैं और वो भी प्लेऑफ्स में जगह हासिल कर चुकी है। चार ऐसी टीमें हैं जिनके पास प्लेऑफ्स में जगह हासिल करने के चांसेस मौजूद हैं। ये चार टीमें हैं 14 पॉइंट्स के साथ राजस्थान रॉयल्स, 13 पॉइंट्स के साथ पंजाब किंग्स, इतने ही पॉइंट्स लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स जिसके पास 12 पॉइंट्स हैं। प्लेऑफ्स में स्पॉट हासिल करने के लिए इन चारों टीमों को अपने आखिरी मुकाबलों में कामयाबी हासिल करनी होगी, जबकि इसके लिए इन्हें दूसरे नतीजे पर भी इन्हिसार करना पड़ेगा। इधर बांग्लादेश ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। यूं पिछले चार मुकाबलों में ये बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल चौथी जीत थी। बॉलिंग, बैटिंग, टीम कॉम्बिनेशन और प्लानिंग की बात करें तो बांग्लादेश हर शोबे में पाकिस्तान से बेहतर टीम नजर आई। बांग्लादेश की टीम में सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन नजर आया, जबकि पाकिस्तान के बेशतर सीनियर खिलाड़ी आउट ऑफ टच और इनकंसिस्टेंट दिखाई दिए। यही वजह है कि पूरी सीरीज के दौरान बांग्लादेश हर सेशन में पाकिस्तान से आगे दिखाई दे रही थी, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी डेफिसिट या लंबे स्कोर को बस चेज करते ही नजर आए। बांग्लादेश की गेंदबाजी, वो स्पिन हो या फिर तेज गेंदबाजी, हर शोबे में बांग्लादेशी खिलाड़ी एग्रेसिव नजर आए, जबकि पाकिस्तान के बल्लेबाज बेहतर शुरुआत मिलने के बावजूद बेशतर मौकों पर लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। वजह जो भी हो, बांग्लादेश ने पिछले चंद एक बरसों के दौरान टेस्ट क्रिकेट में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई है। इसके सीनियर बल्लेबाज मुसलसल जिम्मेदारी का मुजाहरा करते आ रहे हैं। स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ इसने तेज गेंदबाजी का भी एक अच्छा यूनिट तैयार किया है, जिसमें वैरायटी नजर आ रही है। खास बात यह है कि बांग्लादेश की टीम अब बड़ी टीम के खिलाफ खौफ के डर से निकलती हुई नजर आ रही है। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की इम्प्रूवमेंट बात कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद अशरफ मीर।
1: कहते हैं कि हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। खेलों की दुनिया में इस कॉल को बड़ी अहमियत हासिल है। दोस्तों, खेलों की दुनिया में हिम्मत और मेहनत को तरजीह देना ही कामयाबी की असल जमानत होती है। मेहनत की बिना पर ही छोटे से छोटे खिलाड़ी भी एक न एक दिन बड़े बड़े खेल कारनामे दिखाकर अपना और अपने वतन का नाम रोशन कर देते हैं। इस हकीकत से हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि क्रिकेट के खेल में छोटे खिलाड़ियों या छोटी टीमों ने मेहनत को अपनाकर बिलाकर कामयाबी की मंजिलें तय कर ही ली हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल बांग्लादेश क्रिकेट टीम के रूप में आजकल हमारे सामने है। बांग्लादेश की टीम ने मुसलसल मेहनत और लगन की बुनियाद पर पिछले करीब एक साल से क्रिकेट की दुनिया में मेहनत की बिना पर लगातार फतूहत का सिलसिला जारी रखते हुए दुनियाई क्रिकेट में अपनी एक गहरी छाप छोड़ दी है। इस टीम ने गुज़श्ता एक साल के दौरान इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जबरदस्त फतूहत हासिल की है। खासतौर पर होम ग्राउंड और दीगर कंडीशन में इन्होंने बड़ी टीमों या वर्ल्ड टीमों के खिलाफ यादगार कामयाबियां समेटकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इस टीम ने खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में तारीखी फतूहत और डोमेसाइल सीरीज में क्लीन स्वीप करके अपनी पोजीशन काफी मजबूत की। पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने शेर बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में पाकिस्तान को 104 रन से हराया, जबकि खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने 78 रन की फर्क से अपनी जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश करके एक यादगार तारीख रकम की। WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस सालाना कामयाबी के तसलसल की बदौलत बांग्लादेश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पर नुमाया छलांग लगाई है और इनका शुमार अब टॉप टीमों में होने लगा है। अप्रैल 2026 में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान होम सीरीज खेली गई, जिसमें वनडे और T20 मैचों में बांग्लादेश ने उम्दा खेल पेश किया। आयरलैंड के खिलाफ नवम्बर 2025 के टेस्ट और T20 सीरीज में भी टाइगर्स ने नुमाया फतूहत हासिल की। इस शानदार कारकर्दगी ने बांग्लादेश को बैन अलावामी क्रिकेट में एक इंतहाई खतरनाक और मुतवाजिन टीम के तौर पर उभारा है। बांग्लादेश की मेहनत का पता कुछ बरस पहले ही नुमाया होने लगा था, जब से इन्होंने श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड चैंपियन टीमों के खिलाफ एशिया सीरीज और दूसरी सीरीजों में कई बार हरा दिया। अलावा अजीज दूसरी बड़ी टीमों के खिलाफ भी मेहनत से काम लेकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करना शुरू किया।

0: एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। यहां मगरबी जर्मनी की तरफ से गैर्ड मुलर ने गोल दागकर इंग्लैंड को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और जर्मनी को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। क्वार्टर फाइनल की तरह सेमीफाइनल में भी मगरबी जर्मनी का आगाज बिल्कुल अच्छा ना हुआ और बोनेनसेना ने 8वें मिनट में ही गोल स्कोर करके इटली को 1-0 से आगे कर दिया। लेकिन जर्मनी के लिए इससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि फ्रेंस बेकनबार को गिराया गया, जिसकी वजह से उनका कंधा डिसलोकेट हो गया। जर्मनी के लिए कार्ल शनिलिया ने खेल के आखिरी लम्हात में बराबरी का गोल दागा और यूं क्वार्टर फाइनल की तरह ये मैच भी एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। चूंकि जर्मनी ने अपने तमाम उत्पादिल खिलाड़ियों को पहले ही मैदान में लाया था, लिहाजा बेकनबार के शदीद दर्द के बावजूद उन्हें पूरे वक्त मैदान में रहना पड़ा। मैच इजाफी वक्त में चला गया तो मुलर ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में पूरी इटालियन डिफेंस को बीट करके एक शानदार गोल दाग दिया। लेकिन अगले ही पल इटली ने ये गोल न सिर्फ उतार दिया बल्कि साथ ही एक और गोल बनाकर स्कोर 3-2 कर दिया। खेल के 110वें मिनट में मुलर ने खूबसूरत डाइविंग हेडर के जरिए गोल दागकर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। तहम एक मिनट बाद रिवेरा ने इटली के लिए चौथा और फैसलाकुन गोल बनाकर मगरबी जर्मनी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 1970 के बाद गैर्ड मुलर के लिए एक और अहम और यादगार वर्ल्ड कप 1974 का आलमी कप था। मगरबी जर्मनी की टीम उस वर्ल्ड कप में मेजबान थी और मुलर के लिए ये सुनहरी मौका था कि वो खिताब उनके हिस्से में आए जिससे वो अभी तक महरूम थे। अपने इब्तदाई मैचेस में जर्मन टीम ने चिली और ऑस्ट्रेलिया को हराया। मुलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जबरदस्त गोल बनाया। मशरकी जर्मनी के खिलाफ मगरबी जर्मनी की टीम गैर मुतबक तौर पर 1-0 से हार गई, लेकिन इसके बावजूद टीम अगले दौर तक रसाई हासिल करने में कामयाब रही। फिर मगरबी जर्मनी ने यूगोस्लाविया, स्वीडन और पोलैंड सबको हराया। इन तीन मैचेस में मुलर ने 2 और गोल स्कोर किए। यूं ये टीम 1974 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। यहां टीम के सामने टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट हॉलैंड की टीम थी। योहान क्राइफ की डच टीम को वर्ल्ड कप जीतने का सबसे बड़ा दावेदार समझा जाता था। फाइनल मैच शुरू हुआ तो मैच 86 सेकेंड्स में गोल स्कोर करके हॉलैंड ने अपने इस दावे को और ज्यादा तकवीत बख्शी। लेकिन खेल के 25वें मिनट में पॉल ब्रेटनर ने जर्मनी के लिए गोल स्कोर करके मैच 1-1 से बराबर कर दिया। उसके बाद खेल के 43वें मिनट में गर्ड मुलर ने जर्मनी के लिए विनिंग गोल दागा और यूं अपने होम ग्राउंड्स पर 75,000 तमाशाइयों के सामने गर्ड मुलर ने जर्मनी को आलमी चैंपियन बना दिया। इस गोल के बारे में खुद गर्ड मुलर लिखते हैं, एज आई केम फॉरवर्ड 3 डिफेंडर्स केम विद मी, आई स्टेप्ड बैक एंड दे वर आउट ऑफ पोजिशन, सो आई फायर्ड इनटू द कॉर्नर एंड दैट वाज इट। अपने वर्ल्ड कप करियर में मुलर ने 14 गोल स्कोर किए, जो काफी देर तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 1974 में वर्ल्ड कप की कामयाबी के कुछ माह बाद इस अजीम खिलाड़ी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को खैरबाद कह दिया।
1: आज के स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
2: स्पोर्ट्स टाइम।
3: समीन, आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम। प्रोग्राम की मेजबान हैं एजाज नाजकी और प्रोड्यूसर वसीम फारूक।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समय रात के 8:45 मिनट हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।

0: भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी के सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम 17.5 में खर्सन पेट समय 9:09
4: समय पेशे खिदमत से प्रोग्राम हम सफर।

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुबरुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुबरुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मज़ाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुबरुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुबरुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक़ वस्ता यूरोप इकतसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में शिरकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है।
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: भारत और कुबरुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर उन्हें कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरक टास्क फोर्स का आगाज किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुबरुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: बाद में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत, आमोदरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौ तकरर शुदा नौजवानों को तकररी के खत तकसीम करेंगे। इस मौके पर मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है जिससे वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने और इस ख्वाब को ताबीर अता करने के अज़्म का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेला वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को अवलीन तरजीह देने के अज़्म की तकमील की जानिब एक कदम है। रोजगार मेला नौजवानों

मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदामात और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, तावुन, पायदारी और आलमी पेशरफ्त में शराकत दारी के ब्रिक्स के मौजूदात पर अपने ख्यालात का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। CBI ने बताया कि ये नीट UG 2026 इम्तिहानात के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। CBI ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट UG 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुताल्लिक कुछ सवालात

0: के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। सीबीआई ने इत्तला दी है कि उन्होंने नीट यूजी 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे, जिसे इस महीने की 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज्यादा खपत 270.82 गीगावाट रही, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरज़्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर मीटिंग वे जाता रहता शेर अठक मीटर यानी अक्सा सखत शुरह किलो हर सवाल आव एफ एम अखतरा शरिया 5 मेगा हर्सन पेट समय रात सन 9:30 पेश खदमत छो सेहत मुतलिक फोन इन प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: हेलो रेडियो किल्ले वली बोजो सेहत मुतलिक फोन इन प्रोग्राम हेलो रेडियो किल्ले।
4: आदाब सामईन, प्रोग्राम ہیلو ریڈیو کلینک تار شمار ہس بہ تہ میزبان معراج مقدومی تہس خدمت مز بے ایک

समय इंटरेस्ट व सेहत मुतलिक प्रोग्राम पहुंचान हेलो रेडियो क्लिनिक मेहमान आज डॉक्टर माजिद शफी सेक्रेटरिस्ट मौजू ऑटिज्म इन चिल्ड्रन तो प्रोग्राम की मेजबान आज मेराज मुजफ्फर मखदूमी यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।

0: साफ अखलाक फाजिला और रूहानी मंजिलत मरतबा के बिना पर आंजनाब आपके बड़े कदरदानो मदा थे। ख्वाजा इसहाक खदलानी भी अपने मुर्शिद पाक की खिदमत गुजारी का कोई छोटा या बड़ा मौका हाथ से न जाने देते थे। आंजनाब की जैर तरबियत रहकर आपने तसव्वुफ़ सलूक में बहुत ही ऊंचा मलका हासिल किया।
1: हजरत शाह हमदान ने न सिर्फ आपकी रूहानी वजाहत से मुतासिर होकर अपनी दुख्तरे नेक अख्तर को आपकी तजवीज में दिया, बल्कि ख्वाजा खितलानी रहमतुल्लाह अलैह को अजरहे करम आपका खिरकाए मुबारक भी अता फरमाया, जो एक ऐसा एज़ाज़ है जिस पर ख्वाजा साहब को ताउम्र फख्र इम्बिसात रहा। तारीख में कदरे इस बात के कम इशारे मिलते हैं कि आपने हज़रत शाह हमदान के साथ कश्मीर का तबलीगी दौरा कब किया। अलबत्ता इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि ख्वाजा साहब ज़रूर वारिद कश्मीर हुए होंगे, क्योंकि मुर्शिद पाक से इंतहाई क़ुर्बत व अक़ीदत इस बात का तकाज़ा करती थी। आपके बारे में बताया जाता है कि अमीर तैमूर के बेटे शाहरुख ने उलमाए सू के उकसाने पर आपको 84 साल की उम्र में अपने एक भाई समेत दर्जे शहादत पर पहुंचाया। इसी मुनासिबत से आपको शाह शहीदां के लकब से शोहरे आम मिला। एक लिहाज से हज़रत अमीर कबीर के अहले बैत को अगरचे हज़रत मीर सैयद मोहम्मद हमदानी अलैहि रहमह उनकी हमशीरा और हज़रत ख्वाजा इसहाक़ खितलानी तक महदूद समझा जा सकता है, लेकिन अमलन आंजनाब के मानवी फर्जंदा की फ़हरिस्त तवील तरीन है, जिनमें वो तमाम अवलियाए किराम और पाक नफूस मुसलमान शामिल हैं जिनको आपने या आपके रफ़का और उनके मुतबीन व मुहिब्बीन ने इस्लाम व सफाई कल्ब से बहरावर फरमाया। इस फ़हरिस्त में जहाँ अलमदार कश्मीर और महबूबुल आलम रहमतुल्लाहि अलैहिम जैसी बुलंद मरतबा रूहानी हस्तियाँ मौजूद हैं, वहाँ वो करोड़ों मुसलमान भी आंजनाब से रिश्ते पिदर व फरजंदी में शामिल हैं, जो आज भी अकीदत व एहतराम से आपके मिशन पर ज़ाती तौर पर आमिल हैं और रहती दुनिया तक ये रिश्ता उनके लिए वसीले नजात और आखिरत की अदालत में शफात व सिफारिश का ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह।

काश कि फिराक यार सब्र से हम आगोश होता और इसके इश्तियाक का गम आंखों में कांटे की तरह खटकता।

और अगर इसका ख्याल लम्हा भर के लिए भी नजरों से ओझल हो जाए तो कल्ब जान बेचैन बेकरार हो जाए।

अगर ये तोहफा उसके जलाल के शायन शान होता तो अली उसकी राह में ऐसी सैकड़ों जाने कुर्बान कर देता।

0: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है, मीडवेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। शब के 11 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नाश्र होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में

0: नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Navneeta Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said,

रात 9:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा पेशरफ्त। मेहमान है एंटरप्रेनर अबान हबीब मलिक। प्रोग्राम का मौजू है ड्रोन डेवलपमेंट इन कश्मीर। मेजबान सलीम कलो। शब 10 बजे कश्मीरी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम पेश होगा तुहंस फरमाइश। मेजबान रशीद निजामी आर परवीन अली। सुबुगाही पेश होगा हमारी नशरियात के आगाज में 6:35 पर। लाइव प्रोग्राम पैम सुब पेश होगा 7:10 पर। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे रशीद निजामी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

दोस्तों, कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिनमें 1267 यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, कड़ी और समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य

0: सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus President said, both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said, both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम।
1: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितना प्यारा है ये रात का समा, जब सोचने के लिए कुछ नहीं, बस खामोशी ही खामोशी। कंपेयर किया जाए तो दोपहर से थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है और दिल कुछ देर के लिए हर उलझन से आजाद महसूस कर रहा है।

ये वादा रहा फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन ने संगीत दिया। इन लफ्जों में एक अजीब से अपनेपन की भरी तसल्ली है, जैसे बरसों बाद भी कोई रिश्ता दिल में वैसा ही महफूज हो। रात की खामोशी में जब ये गीत बजता है तो बीते हुए लम्हे, पुरानी मुस्कुराहटें और अधूरी बातें सब धीरे धीरे याद आने लगती हैं।

बड़े दिल वाला फिल्म से आपने गाना सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहीं न जा आज, कहीं न जा, दिल के ये लम्हे फिर लौट कर कहां आएंगे। बस यूं ही पास बैठे रहो कि खामोशी भी आज को

याराना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

0: दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। अहले दिल अक्सर अपने जज्बातों का शोर दुनिया को नहीं सुनाते, वो मुस्कुराहटों के पीछे तकलीफ छुपा लेते हैं और अपने हिस्से का दर्द खामोशी से सह लेते हैं। शायद इसी खामोशी में उनकी मोहब्बत की गहराई और दिल की मजबूती दिखाई देती है।

प्रेम बंधन फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 43 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से आपने गाना सुना। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए

0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण ने पणजी गोवा में उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 का आयोजन किया। इसमें समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for strengthening and multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit to the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1,267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorist financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism through the United Nations and the Financial Action Task Force. They reiterated their zero-tolerance approach to terrorism, rejecting double standards, state-sponsored terrorism and any justification for such acts under any circumstances. The two leaders agreed to deepen defense and security cooperation, including through collaboration between their respective defense industries, with a special focus on cybersecurity and emerging technologies. Welcoming the India-Cyprus Bilateral Defence Cooperation Programme signed in February this year, the two leaders underscored the potential for significant cooperation in the defence sector. The leaders welcomed the conclusion of the roadmap for bilateral defence cooperation between the ministries of defence of the two countries for the period 2026-2031. As India and Cyprus are maritime nations with deep-rooted naval traditions, both leaders encouraged expanding cooperation in the maritime domain. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force Investiture Ceremony and Rustam G. Memorial Lecture in New Delhi yesterday. He said that the work is progressing towards creating an impregnable border security grid within the next year by integrating all kinds of technologies under the smart border concept.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक, वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

पावर हाउस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया रवि ने। दिले नादान गम से यूं न घबराना, जिंदगी की राहों में खुशी और उदासी दोनों साथ चलती हैं। कभी कोई याद दिल को बेचैन करती है तो कभी वही याद जीने का सहारा बन जाती है। दिल अगर सच्चा हो तो दर्द भी उसे और गहरा और खूबसूरत बना देता है।

दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में। केएल परदेसी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। रात जब खामोश होती है तो दिल की दबी हुई बातें और भी साफ सुनाई देने लगती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ दिया जाए तो नींद नहीं सिर्फ बेचैनी लौटती है। कभी कभी तन्हाई ही इंसान की सबसे अच्छी हम सफर बन जाती है।

जरक खान फिल्म से आपने गाना सुना आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस मोहिंदर ने। शाम की तन्हाइयां में तन्हाइयां हैं, ऐसे में तू आजा सनम। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम खामोशी ओढ़ लेती है तब किसी अपने की कमी और गहरी महसूस होती है। दिल चाहता है कि कोई पास बैठे, कुछ न कहे, बस साथ होने का एहसास दे।

चार दिल और चार राहें फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। कुछ मुलाकातें इतनी कीमती होती हैं कि उनका इंतजार भी अपने आप में एक एहसास बन जाता है। दिल हर आहट पर ठहर जाता है, हर गुजरते पल से यही कहता है कि शायद अब वो सामने आ जाए। मोहब्बत में कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका इंतजार होता है।

जहां आरा फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 43 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

पठान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। इसे लिखा ऐश कंवल ने और संगीत दिया जिमी ने। जब कोई दिल में गहराई से बस जाता है तो फिर आसपास की दुनिया धीरे धीरे धुंधली लगने लगती है। हर बात, हर रास्ता, हर खामोशी उसी की याद से जुड़ जाती है। इंसान लोगों के बीच रहकर भी कहीं भीतर अकेला हो जाता है, जैसे उसकी सारी दुनिया सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमट आई हो।

आसमान फिल्म का गाना आपने सुना सीएच आत्मा की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। ये दुनिया भी अजीब है, कभी छोटी सी मोहब्बत को ठुकरा देती है और कभी दिखावे को सर आंखों पर बिठा लेती है। इंसान जितना लोगों को समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। शायद इसीलिए सुकून अक्सर भीड़ में नहीं अपने ख्यालों और चंद सच्चे रिश्तों में मिलता है।

सगाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और तलत की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सुहागन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। किसी का साथ इतना अजीज होता है कि उसकी मुस्कान में सुकून और उसकी मौजूदगी में पूरी दुनिया नजर आने लगती है। तब मोहब्बत सिर्फ चाहत नहीं रहती, दिल की सबसे खूबसूरत इबादत बन जाती है।

वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

मुक्ति फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। सुहानी चांदनी रातें अक्सर दिल को ऐसी बेचैनी दे जाती हैं कि नींद भी आंखों के पास आकर ठहर जाती है। ठंडी हवा, खामोश गलियां और यादों में धुली कोई मीठी सी आवाज रात को और भी लंबा बना देती है। ऐसे लम्हों में इंसान सोना नहीं चाहता, बस उन एहसासों को चुपचाप जीते रहना चाहता है।

अनुरोध फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि वक्त गुजर जाने के बाद भी उनकी बातें, उनकी हंसी और उनका एहसास दिल में कहीं ठहर जाता है, और कुछ लोग तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आते हैं, मिलते हैं, फिर धीरे धीरे यादों से उतरते चले जाते हैं। शायद फर्क रिश्तों का नहीं, एहसास की गहराई का होता है।

मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज में। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:30 और ठीक 6 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों को मेरे सुरों में बसा लो, जैसे कोई मीठी धुन धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आवाज का हर एहसास मेरी खामोशियों को भी गीत बना दे और फिर जिंदगी बस एक खूबसूरत सा साज बनकर रह जाए।

चेतना फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और लता की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इन शब्दों में जैसे पूरी दुनिया की सादगी और गहराई समाई हुई है। जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो पल अपने हों, जिन्हें किसी अपने के साथ महसूस किया जा सके, उन्हें खुलकर जी लेना चाहिए।

अवतार फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 44 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेवे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 10 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके एहसास से जुड़े होते हैं। इस गीत में मोहब्बत की वो सादगी है जो दिल को बिना शोर किए छू जाती है और ये गीत है एक बेहद खूबसूरत गीत फिल्म राजकुमार से। ये फिल्म आई थी 1964 में तुमने पुकारा और हम चले आए। सिर्फ एक गीत नहीं किसी के लिए बे इंतहा चाहत का एहसास है। जब अपना कोई दिल से पुकारे तो फासले मायने नहीं रखते बस कदम खुद ब खुद चल पड़ते हैं। ये गीत याद दिलाता है कि सच्चा प्यार इंतजार नहीं करता बस पुकार सुनकर चला आता है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते महसूस किए जाते हैं। उनमें से ही ये भी नगमा है तुमने पुकारा और हम चले आए। बेहद खूबसूरत है नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए ख़ास तौर से। तो आइए इसी नगमे के साथ आज के इस सफ़र का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। बेहद खूबसूरत ये नगमा मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा था हसरत।

जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं और कोशिश भी यही करते हैं कि ये नगमे हमेशा हमारे दिल में बसे रहें और यूं ही हम भी उसे प्यार करते रहें। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में अगले नगमे के साथ। और अगला नगमा बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला। कहते हैं कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं नजरों से शुरू होते हैं, जैसे तुम्हारी आंखों में कोई अपना सा जहां दिखता है, जहां हर खामोशी एक बात कहती है और हर मुस्कान दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आंखों में देखना ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो और वो दुनिया की सारी आवाजें बस एक एहसास में बदल गई हों। अगर मोहब्बत का कोई सबसे खूबसूरत पता होता तो शायद वो तुम्हारी आंखें होती, जहां दिल हर बार खोकर भी खुद को पा लेने की कोशिश करता है। बिल्कुल इस नगमे की तरह। और ये नगमा है गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में फिल्म प्यासा से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस बेहद खूबसूरत महफिल हमराही में। और आज के इस हसीन रात में मैं हूं आपका हमराही, आपका दोस्त, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, जिसमें गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो दौर था जब बेहद खूबसूरत नगमे बना करते थे और एक गीत को बनने में कई कई दिन लग जाया करते थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीक इतनी विस्तार से नहीं हम लोगों के दरमियान पहुंचे थे कि हम आज की तरह उन गीतों को तैयार कर पाए। मगर वो दौर था जिसने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया, सिर्फ गीतों के जरिए ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी इन गीतों ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और शायद इसीलिए ये नगमे हमारी जिंदगी से जुड़ गए और इन सब के बीच एक सबसे खूबसूरत एहसास जो हम लोगों के लिए है वो है प्यार, मोहब्बत। प्यार शायद वही होता है जब किसी एक इंसान के लिए इंसान खुद को बदलने लगे

तुमसे मिलने के बाद समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, किसी की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। तुम्हारे प्यार में जाने कितने रंग उड़ लिए हमने, कभी बेवजह मुस्कुराना सीखा तो कभी तुम्हारी यादों में घंटों खो जाना। ये दिल भी कितना अजीब है ना, तुम्हारे लिए हर बन जाने को चाहता है, बस तुम्हारे करीब रहने की एक छोटी सी वजह के लिए। अगर कोई पूछे मोहब्बत कैसी होती है तो बस इतना ही कहना, किसी एक शख्स के लिए खुद को हर रोज नए अंदाज में पा लेना, वही मोहब्बत है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी इस पसंदीदा महफिल में जो आपके दिल के बेहद करीब है और गोल्डन एरा के वो सुनहरे वो खूबसूरत नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब है। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1966 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जिसमें मुख्य किरदार निभाया था विश्वजीत, राजश्री, प्रेम चोपड़ा, रहमान, जैन, राज मेहरा, दुर्गा कोटे, राजेंद्र नाथ, असित सेन वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है रवि साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट ने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

अगेश्वरी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। और हमराही में आज हूं मैं आपका हमराही, आपका दोस्त, आपके साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप भी यूं ही हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ हम भी हाजिर हैं आपके लिए इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। और ये महफिल इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी है कि वो हमें सीधे गोल्डन एरा के उस दौर में लेकर चली जाती है, क्योंकि ये दौर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। ये दौर एक ऐसा दौर था जब फिल्में हमारे समाज का आईना हुआ करती थी और फिल्में ऐसा प्रभाव डालती थी समाज पर कि बस सब कुछ ऐसा लगता था कि हमारे इर्द गिर्द चल रहा हो। फिल्में जब बनती थी तो हकीकत से काफी

के करीब हुआ करती थी और भले ही वो दौर बहुत पीछे छूट गया हो, लेकिन जब भी हम इसको देखते हैं, पुरानी फिल्मों को देखते हैं, गोल्डन एरा के उन फिल्मों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये दौर अभी बहुत पीछे नहीं रहा, बल्कि हमारे इर्द गिर्द आज भी अगर हम गांवों में जाएं, देहाती क्षेत्रों में जाएं, तो आज भी लगता है कि जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। वो बैलों की टोलियां और वो बैलगाड़ी, वो तांगे शायद आज भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे जब आप गांवों और शहरों से दूर गांवों की तरफ रुख करेंगे। हालांकि सब कुछ बदलता जा रहा है धीरे धीरे, मगर जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने जो फिल्मों में देखा है अब भी बिल्कुल वैसा ही है। ऐसी ही एक फिल्म थी जो आई थी 1957 में, और वो फिल्म थी नया दौर। एक दौर एक गांव को शहर बनने की तरफ किस तरीके से लेकर के जाता है और किस तरीके से वहां पर चीजें बदलती जाती है, ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, शमशाद बेगम और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में। आप ये कह सकते हैं कि ये एक कव्वाली है तो भी गलत ना होगा। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 10 सेकेंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है जब किसी का साथ सिर्फ साथ नहीं सुकून बन जाए और प्यार हो तो जिंदगी मुश्किलों में भी मुस्कुराने की वजह दे देती है। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जहां प्यार और अपनापन कदम कदम पर साथ हो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो जीने का अंदाज ही बदल देते हैं, हर दिन एक नई कहानी लिखती है और प्यार उसे खूबसूरत बना देता है। जब दिल में मोहब्बत और आंखों में उम्मीद हो तो जिंदगी और मौसम में हसीन लगती है। सही इंसान का साथ मिल जाए तो फिर साधारण आम सी जिंदगी भी किसी खूबसूरत गीत जैसी लगती है, जैसे फिल्म उजाला का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आइए आज के इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं, अरुणिमा के सफर का आगाज करते हैं इसी नगमे के साथ।

अगर जुड़े दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर बेहद खूबसूरत महफिल अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाजों में

किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाजों में नगमा था फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल से। यह फिल्म आई थी 1981 में और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। अरुणिमा की इस महफिल में हम बात जिंदगी से जुड़ी हुई जिंदगी की बातें करते हैं। जिंदगी में भले ही कितनी मुश्किलात आए भले कितनी परेशानियां आए लेकिन जिंदगी को हंसी खुशी के साथ अगर आप प्यार से बढ़ाते हैं तो बस जिंदगी खूबसूरत बन ही जाती है। कहते हैं सही इंसान का साथ मिल जाए तो साधारण सी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत बन जाती है। अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी की भाग दौड़ में अगर कोई मुस्कुराने की वजह बन जाए वही सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, वही सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ जिंदगी हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आती है और इसी उम्मीद के साथ हम भी जिंदगी को बड़ी ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही चुलबुला सा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म शागिर्द से। ये फिल्म आई थी 1967 में जिसमें बेहद खूबसूरत कलाकारों ने काम किया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके नगमे भी बनाए गए थे। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जॉय मुखर्जी, आईएस जौहर, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, मदनपुरी, असित सेन, ए के हंगल साहब, शिवराज और शेट्टी वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूर और बहुत ही खूब

खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा मोहम्मद रफी साहब और जोगिंदर की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आपके लिए।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमा, दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा, जा।

हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमा दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33 और 10 सेकेंड। अरुणिमा की बेहद खूबसूरत महफिल जिसमें हम जिंदगी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की, फिल्मों के नगमों की और उन नगमों में बसी जिंदगी की। ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसमें कहते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन जब दिलों का रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद फिर से मिल जाते हैं। ये दुनिया इस नगमे के मुताबिक बहुत ही छोटी सी है और अनजाने रास्ते हैं और इस उम्मीद में हम जीते हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमारी मुलाकात हो जाए। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं पर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं और कुछ लोग बस एक बार मिलकर भी दिल में हमेशा के लिए घर बना लेते हैं। जिंदगी का सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर साथ में खूबसूरत यादें हों तो हर मोड़ थोड़ा आसान लगने लगता है। मुझे अच्छा लगता है ये सोचकर कि इस छोटी सी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे रास्ते फिर से मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि सच्चे रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वो बस वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। जैसे हमारा और आपका रिश्ता बेहद गहरा, बेहद प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, अपने ईमेल्स के ज़रिए। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए और जल्दी से आप जहाँ भी इस वक्त सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं काम

आप अपने ईमेल के जरिए अपने दिल की बात हम तक पहुंचाइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। तब तक मैं आपको वही नगमा सुनवाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। रंगोली फिल्म का यह नगमा किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

जी हाँ, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। बहुत ही छोटा सा ये नगमा और बहुत ही खूबसूरत बातें। कहते हैं कि बातें कम अल्फाज में भी बहुत कुछ कह जाती हैं, छोटी सी लाइनों में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती। ऐसा ही ये नगमा था कि छोटी सी ये दुनिया है, पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, फिर पूछेंगे हालचाल क्या है, कैसे हैं और अब कैसे रहें। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरीके से कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल को सुकून देते हैं। जैसे किसी अपने का हाथ थाम कर ये यकीन होना कि अब हर मुश्किल में कोई तो हमारे साथ खड़ा है। तुम्हारा साथ किसी खूबसूरत

खूबसूरत दुआ जैसा है जो हर दिन थोड़ा और हसीन बना देता है। अब खुशियां बड़ी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती है, और ऐसा तब होता है जो जब आपका अपना कोई आपके दिल के बेहद करीब होता है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया लेकिन सबसे खूबसूरत एहसास यही दिया कि जब कोई दिल से अपना बन जाए तो हर मौसम, हर रास्ता, हर दिन, हर वक्त बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है, बहुत ही प्यारा लगने लगता है। बिल्कुल इस नगमे की तरह जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म हनीमून से। यह फिल्म आई थी 1973 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में, जिसको बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने और गीत लिखे हैं योगेश ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। और अरुणिमा में बातें जिंदगी की, और जिंदगी में तमाम मुश्किलात के बावजूद किस तरीके से इसको आगे बढ़ाई जाए उसकी, ऐसी ही बातें जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है जब हमारा कोई अपना हमारे साथ होता है। लेकिन कहते हैं जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं होती, जिंदगी वो होती है जहां किसी की मुस्कान में अपनी खुशी मिलने लगे, जब कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ हर मुश्किल हल्की लगने लगे और हर खुशी दोगुनी। तो समझ लेना चाहिए कि जिंदगी ने आपको सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया है। प्यार सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी के साथ हर दिन को बेहतर बनाने का एहसास है, जहां उम्मीद हो, सम्मान हो और एक दूसरे के लिए प्यार हो और साथ निभाने का वो जज्बा हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर आप ना मिलते तो शायद जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। अब लगता है सच्चा जीना वही है जहां दिल में प्यार हो और साथ में कोई अपना जो हर दिन को जीने की नई वजह दे जाए। बिल्कुल इस अगले नगमे की तरह जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, 1971 में आई फिल्म अधिकार। ये बेहद खूबसूरत फिल्म जिसके गीतों को लिखा है रमेश पंत ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने। उसी फिल्म का यह नगमा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपके लिए।
1: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन हो

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में यह नगमा था फिल्म लाट साहब से। इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: इस बीच दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंचेंगे। श्री रूबियो का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। वे कोलकाता में मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो का विक्टोरिया मेमोरियल जाने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो रविवार को विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर बाजार में पंप एंड डंप रैकेट चलाने के आरोप में कई अपंजीकृत फाइन इन्फ्लुएंसर और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश में जारी बाजार नियामक ने कहा है कि इन संचालकों ने स्मॉल और मिड कैप शेयरों को खरीदा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुझाव साझा करके कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और बाद में मुनाफे पर शेयर बेच दिए। इससे खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सेबी ने कहा कि आरोपियों ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में चल रहे इबोला के मौजूदा संक्रमण से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को अत्यंत उच्च कर दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदहनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 82 मामले और 7 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन संक्रमण के इससे कहीं अधिक व्यापक होने की संभावना है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 6 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और खुलूस आदाब। और दोस्तों आज हम एक नई सुबह में कदम बढ़ा चुके हैं, एक नए दिन की शुरुआत करने ही वाले हैं क्योंकि आज हम एक नए दिन में कदम, जैसे मैंने पहले बताया, रख चुके हैं। तो हर काम की शुरुआत हम खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से करते हैं। हम जो भी नया काम करते हैं, नए दिन की शुरुआत हम करते हैं तो उसी ईश्वर के नाम से करते हैं, उसी भगवान के नाम से करते हैं, उसी खुदा के नाम से करते हैं क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ करने वाला है। कहते हैं कि खुदा की रहमत अक्सर खामोशी में मिलती है, बस दिल में यकीन होना चाहिए। और जब इंसान थक जाता है तब उस ईश्वर को याद करता है और वही ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है। ईश्वर देर करता है मगर बेहतर देने के लिए करता है। हर दुआ तुरंत पूरी नहीं होती, कुछ दुआओं का खुदा सही वक्त पर जवाब देता है, सही वक्त मुकर्रर कर रखा है। इसीलिए ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और तभी हम कोई नया काम करते हैं। इसीलिए हम भी आज के इस नए दिन की शुरुआत उसी खुदा, उसी ईश्वर के नाम से करेंगे। फिल्म पवित्र पापी के इस बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ आवाज है मोहम्मद रफी साहब की।

अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे। पवित्र पापी फिल्म का ये नगमा रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। और दोस्तों, जैसा कि इस नगमे में बताया गया है, बेहद खूबसूरत ये नगमा। और हम हर काम, हम भारतीयों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन तमाम मजाहिब होने के बावजूद, अलग अलग मजाहिब होने के बावजूद, हम सिर्फ और सिर्फ हर काम उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं, उस खुदा के नाम से शुरू करते हैं। उसी तरीके से हम हर दिन की शुरुआत भी उन्हीं के नाम से करते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ करने वाला है। और हर सुबह हम उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, फिर जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और हर सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, वो एक नया मौका लेकर आती है, फिर से मुस्कुराने का, फिर से कोशिश करने का।

और खुद पर भरोसा करने का। कल कैसा था ये जरूरी नहीं आज कैसा होगा, ये हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। इसलिए कोशिश हम यही करते हैं कि हमारा हर दिन अच्छा हो, खूबसूरत हो, प्यारा हो और खुशियों से भरा हो। सूरज हर रोज ये सिखाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी वापस लौटती जरूर है। इसीलिए आज की सुबह को शिकायतों से नहीं, शुक्रिया से शुरू करें। जो है उसकी कद्र करें और जो चाहिए उसके लिए उम्मीद के साथ मेहनत करें। यकीन माने हर नई सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है, बस दिल में उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इस नगमे की तरह बेहद खूबसूरत यह नगमा फिल्म अय्याश से आवाज है यशोदास की। बहुत ही खूबसूरत यह नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप भी जल्दी से जग जाइए, देखिए परिंदे भी जग चुके हैं और वो चहचहाने भी लगे हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:27:15 महफिल आपके अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, जिसमें जिंदगी की बातें और जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाए उसकी बातें, मुस्कुराहट के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे आसपास भी वही मुस्कुराहट बिखरी हुई होती है। कहते हैं कि माना सफर थोड़ा मुश्किल है जिंदगी का, लेकिन रास्तों में थकान भी बहुत होगी। कुछ मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां लगेगा कि अब आगे बढ़ना आसान नहीं, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बाद भी हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है बेहद खूबसूरती के साथ, बहुत ही प्यार से। लेकिन हर किसी खूबसूरत मंजिल की तैयारी भी होता है। जिंदगी कभी सिर्फ आसानियों से नहीं बनती, ये तो उन हौसलों से बनती है जो गिरकर भी मुस्कुराना जानते हैं। और याद जरूर रखें, धीरे चलना हारना नहीं होता, और थोड़ा रुक जाना मंजिल से दूर हो जाना नहीं होता। बस खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो आज मुश्किल लग रहा है कल वही सबसे बड़ी आपकी ताकत बन जाएगी। माना सफर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और जब इरादे सच्चे हो तो रास्ते भी एक दिन मुस्कुराने लगते हैं और आपको राह दिखाने लगते हैं। इस नगमे की तरह